0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
2: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा
3: और क्या। हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
2: अच्छा
3: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
2: अरे वाह,
3: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
2: शुक्र है डबल इंजन सरकार है।
1: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
4: सुप्रभात, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड में, कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ है आप और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे एफएम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
4: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
5: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
4: बिल्कुल, एग्जैक्टली।
5: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उन पे कभी अवेयर नहीं होते, उन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
4: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
5: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
5: टाइम तो होना ही चाहिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें। उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
4: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
5: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
4: ठीक है,
5: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है। हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
4: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
5: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है,
4: प्लीज,
5: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है, वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
4: वायु मुद्रा,
5: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
4: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
5: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
4: ओके,
5: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
4: जी,
5: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है। आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
4: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते,
5: मेडिटेशन तो है ही भाई आपको स्ट्रेस से दूर करने
4: के। कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं स्थिरता के साथ।
5: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं।
4: ओके,
5: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है।
4: ओके,
5: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं।
4: क्या बात,
5: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
4: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
5: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में, जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
4: अरे वाह,
5: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
4: क्या बात है,
5: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ, ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छे होने लगते।
4: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना, इट्स नॉट इजी, है ना?
5: Yes,
4: हर किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है। आज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
5: देखिए, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
4: अरे वाह, क्या नाम है सर?
5: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
4: अरे वाह, क्या बात है।
5: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक है वो।
4: अरे वाह,
5: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
4: लवली।
5: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कम्प्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
4: लवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
5: सुबह योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा
4: कंपनी देती है, सपोर्ट करते हैं। बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं?
5: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
4: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार।

0: लड़कों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
6: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
3: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
7: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर RCB को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला IPL खिताब जीतने वाली RCB ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि IPL 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
3: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
8: धन्यवाद लवलीन। DK शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करें।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मेरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

0: तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
1: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
1: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
0: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इसी स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
3: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
2: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
3: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
2: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
3: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
2: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
3: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती है दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है।
2: सुनो

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंद, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद, हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नानखटाई। नानखटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीजें, तो वो हमें डे बाय डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नानखटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नानखटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूँ लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूँ, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची, बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
8: धन्यवाद
0: जी। प्राची, कैसा लग रहा है, पहले तो बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
8: नाम तो ये बहुत अच्छा, और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
8: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
8: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची, आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बार होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
8: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली डिजिटल टाइम में, ना?
8: बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख
0: डिजिटल
8: की तरफ पड़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक ऐप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिस पे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीज़ें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालोगे, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज़ पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड हैं चीज़ें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज़ बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदलें, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहाँ जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीज़ों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है, इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटीड रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं, पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों है? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों की बातों में ना आएं। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।
3: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सन डाउनर विथ रंग।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: एक नए इतिहास के
2: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर,
3: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
2: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
3: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और साथियों, समय हुआ है 10:10 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, संडे का, रविवार का दिन, जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं। और दोस्तों, मई के महीने का लास्ट दिन है आज, 31 मई की तारीख है। क्या स्पेशल है सब आपको बताएंगे दोस्तों। बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो सूरज की रोशनी कुछ पल के लिए छिप जाती है, लेकिन सूरज कभी बुझता नहीं। ठीक उसी तरह जिंदगी में मुश्किलें और उदासी कुछ समय के लिए हमारी खुशियों को ढक सकती है, लेकिन उम्मीद की रोशनी हमेशा हमारे दिल में मौजूद रहती है। दोस्तों, रविवार की इस खूबसूरत सी सुबह में मौसम भी कितना सुहाना है ना। आसमान में छाए बादल, ठंडी हवाएं और बारिश की आहट जैसे प्रकृति हमें एक संदेश दे रही हो कि रुकिए नहीं, घबराइए नहीं। हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें और नया अवसर लेकर आता है। तो आज अपने मन से सारी चिंताएं निकाल दीजिए, चेहरे पर मुस्कान सजाइए और इसी खूबसूरत दिन का स्वागत कीजिए। दोस्तों, खुश रहने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि हर पल में अच्छाइयां ढूंढना जरूरी है। आप सभी को रविवार की प्यारी सी खुशनुमा और सकारात्मक सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और करते हैं शो की शुरुआत एक खूबसूरत से गीत के साथ। आप भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं दोस्तों इस बेहतरीन से शो में। नंबर हमारा है 9837896896। करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी जानकारियां भी आपके लिए है। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए और खूबसूरत सी गानों का लुफ्त उठाइए। मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे सी गाने के इस पार।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और साथियों, यहाँ पर वक्त हुआ है 10:23। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया उदित नारायण जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी जिंदा दिल। एंड 2003 में ही फिल्म आई थी। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपने आज की सुबह एंजॉय किया। देखिए, संडे की सुबह है और खुशी कहती है आपसे कि मुस्कुराइए। हर दिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत खास होता है, और आज क्या कुछ स्पेशल है वो भी मैं आपको बताऊँगी। एंड यहाँ पर आपके खूबसूरत संदेश आए हैं, उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। और मुझे बताइए एवरीवन कि बाहर का वेदर अभी राइट नाउ कैसा है, क्योंकि आप अलग अलग सिटी में मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने शहर का मौसम का हाल बताइएगा कैसा है वहाँ पर। हमारे शहर में तो बादल हो रहे हैं, बारिश की भी संभावना है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपके शहर का मौसम कैसा है और कैसे आप मुझे बता सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत इजी काम करना है। आपको ना अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपके हाथ में जो मोबाइल है, हाँ, उसी पर आपको हमारा ऑफिशियल नंबर डायल करना है 9837896896। इस पर आप अपना मैसेज हमें पहुँचाइएगा। और दोस्तों, आज 31 मई है और आज पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड नो टंबाकू डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले गंभीर नुकसान के प्रति जागरूक करना है। तंबाकू केवल एक व्यक्ति की सेहत को नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को भी प्रभावित करता है। ये कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। अगर आप या आपका कोई अपना तंबाकू का सेवन करता है तो उसे आज के दिन एक नई शुरुआत करने का मौका दीजिए और खुद से एक संकल्प लें कि नशे से मुक्त रहें, तंबाकू से दूरियां बनाएं। तंबाकू छोड़ो, जीवन चुनो स्वास्थ्य जीवन, नशा मुक्त भविष्य। क्योंकि दोस्तों, एक नशा करने वाला इंसान, उसकी अकेले की जिंदगी खराब नहीं होती है, पूरे परिवार का भविष्य खराब हो जाता है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी नशा करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, कृपया ना करें। इतना अनमोल, इतना खूबसूरत जीवन मिला है, इसे फालतू चीजों से क्यों व्यर्थ करना है। अच्छी चीजें अगर आपको इस्तेमाल करना ही है तो अच्छी चीजें कीजिए, जिससे आपकी सेहत भी स्वस्थ रहे और आपका परिवार भी खुशहाल रहे। और हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत संदेश भी आए हैं, तो उनको भी जल्दी से हम शामिल करते हैं। सबसे पहले हमें ये मैसेज पहुंचाते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी जी, साथ में मेहराज जहां भी हैं, और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप। वेरी गुड मॉर्निंग सर, हम बहुत ही अच्छे हैं और आप सबसे बातचीत करके और भी अच्छे हो जाते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना साहू जी का, साथ में प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रंजल, समीक्षा, आराध्या साहू जी का मैसेज हमारे पास आया है। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजे खुशी जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार सर। दोस्तों, कुछ खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर आपसे करेंगे और भी गुफ्तगु, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी आप तक हमें पहुंचानी है। और क्या स्पेशल है आज बताएंगे आपको, पहले ही प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा। लौट कर आती हूँ मैं इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस बाद।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
1: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी है आपके साथ संडे की सुबह. और अभी समय हुआ है 10:37. बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया. दिल इबादत कर रहा है. बिल्कुल जी, हमारा दिल भी इबादत कर रहा है आप सभी के लिए कि आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपनों के साथ रहें. दोस्तों, आज 31 मई का दिन भारतीय इतिहास की एक ऐसी महान नारी को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने साहस, न्याय, प्रियता और जनसेवा से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी. हम बात कर रहे हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की. अहिल्याबाई होलकर जी केवल एक महारानी नहीं थी बल्कि वे जनता की सच्ची सेवक थी. उन्हें लोकमाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने राज्य की प्रजा को अपने परिवार की तरह माना. उनके शासन काल में न्याय, विकास और धर्म के कार्य को विशेष महत्व मिला. काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर सहित देशों के अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के पुनर्निर्माण और संरक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्होंने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए भी अनेक कार्य किए हैं. दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर जी हमें सिखाती हैं कि सच्चा नेतृत्व सत्ता नहीं, सेवा और संवेदनशीलता से जन्म लेता है. उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और अच्छे कर्मों से समाज में सकारात्मकता बदलाव लाया जा सकता है. सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. दोस्तों, पॉजिटिव जब हम सोचते हैं तो चीजें भी बहुत अच्छे से होती हैं. और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं. जी हाँ दोस्तों, जिनके जनसेवा को धर्म बनाया, जिसने जनसेवा को धर्म बनाया, न्याय और करुणा का दीप जलाया, ऐसी महान लोकमाता को आज हम सबका कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें. और दूसरी खूबसूरत सा देशभक्ति गीत भी हम यहाँ पर आप सभी को सुनवाएंगे और आप सभी के संदेश जो आए हैं उनको भी हम शामिल करेंगे. आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और दोस्तों, जल्दी से आप अपने मैसेज हमें पहुंचाइएगा. हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके खूबसूरत संदेशों का. और मैंने आपसे मालूम किया था कि आप मुझे बताइए कि आपके शहर का मौसम कैसा है. देखिए, हमारे शहर के मौसम की अगर बात करें तो बादल छाए हुए हैं. आपके यहाँ का कैसा वेदर है, फटाफट से मुझे मैसेज करके बताओ. और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है उमा शंकर जी का. और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम जी, नमस्कार, आप कैसी हैं? हम कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका. जी बहुत अच्छे हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं. कहते हैं, हमारे रुद्रपुर में कल शाम को बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी और ज़ोर से आंधी भी आई थी. और इन्होंने लिखा है कि ओले भी गिरे थे, आज भी बादल आ रहे हैं. अच्छा, बादल आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं. ओके, वो घूम रहे हैं, अभी सुबह सुबह वॉक करने आए हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ पर भी कल शाम में बारिश हुई थी और ओले भी पड़े थे मुरादाबाद में भी. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई एम गुड. बस थोड़ा सा कोल्ड है, जल्दी से ठीक हो जाएगा. ये भी मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है. और कोई भी, जब पता है आपको कोई भी चीज़ होती है ना दोस्तों, तो वो लगने को तो जल्दी से लग जाता है. चाहे वो जैसे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम अगर आती है, परेशानी आती है, तो वो वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे गुजरता है. वैसे ही जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो जल्दी से ठीक नहीं होता है, उसको भी समय लगता है. तो ये कोल्ड जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों इतना, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है. मैं 5 महीने ठीक रहती हूँ, 6 महीने में फिर से मुझे कोल्ड हो जाता है, जबकि मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ, अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं. लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाऊंगी. ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं रिशाद अंसारी जी भी. कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुबह सुबह. अच्छा लगता है जब आप सब अपने संदेश पहुंचाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है, दिल को खुशी भी मिलती है. चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ एक खूबसूरत सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आती हूँ। आप कहीं मचाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए और खुशी कहती है दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि हर दिन बहुत प्यारा है और किसी भी दिन को ना ऐसे ही एवे ही नहीं वो करना चाहिए, लाइक टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो होगा बेस्ट होगा। पॉजिटिव सोचिए और मुस्कुराते रहिए। गर्मा गर्म क्या नाश्ता कर रहे हैं अभी आप? बढ़िया है, अच्छी बात है, नाश्ता कीजिए। अभी जो हमें कार में सुन रहे हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि हौली हौली ड्राइव कीजिए।
1: सर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों देखिए, हम आपको बता देते हैं, आज 31 मई की तारीख है और आप जानते ही हैं कि दोस्तों आज महीने का आखिरी रविवार है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात आज सुबह 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी देशवासियों से सीधे संवाद करते हैं, प्रेरणादायक कहानियां, सामाजिक पहल, युवाओं की उपलब्धियां और देश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय साझा करते हैं। तो आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सुनना ना भूलिएगा, ठीक 11 बजे मन की बात। और दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो खूबसूरत आपके संदेश आए हैं उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अमरपाल ठाकुर जी का और ये कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और सर कहते हैं कि मैम नशा तो कोई सा भी नहीं करना चाहिए, नशा कोई भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर नशा करना ही है ना तो नशा करना चाहिए अपने पैशन का, अपने जुनून का, अपने ड्रीम को पाने का। वो नशा आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाएगा, जो आपने ड्रीम देखे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। अगला मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का और साथ में मोहम्मद आलम सिद्दीकी जी भी हैं। इनकी पूरी फैमिली कार्यक्रम को इस वक्त सुन रही हैं और सभी के साथ ये भी कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हेलो खुशी जी कैसी हैं आप, आई होप आप अच्छी होंगी और आनंद सर भी अच्छे होंगे। हाँ जी बहुत ही अच्छे हैं। ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं भूमि एंड मुस्कान, थैंक यू भूमि एंड मुस्कान, नाम बहुत ही प्यारे हैं आप दोनों के और आप दोनों भी बहुत क्यूट हो। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी और ये कहते हैं, खुशी जी को हमारा आदाब, कैसी हैं आप, आपको भी आदाब सर, मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। और ये कहते हैं, संडे मॉर्निंग आपका शो सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, खुशी जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ये मुरादाबाद सील गुप्ता से हमें मैसेज पहुंचाते हैं सलीम अंसारी जी, साथ में चमन जी हैं, अनाया सनाया सुभान अंसारी और इनके दोस्त भी हैं कासिम अलवी जी। एफएम परिवार में सब लोग कैसे हैं? हाँ जी सब लोग ऑल गुड, बढ़िया हैं। आज तो सबकी छुट्टी है तो इन्जॉय कर रहे हैं सब अपने अपने घर पर और हम स्टूडियो में हैं आप सभी के साथ। चलिए दोस्तों सुनवाती हूँ एक खूबसूरत सा गीत और उसके बाद आप सुनेंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात और ये खूबसूरत सा गाना आप सब सुनिएगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: कम बख्त सर पे चढ़ा है, कभी खुद से

0: सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
3: नमस्कार सर। नमस्कार।
4: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
5: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया, तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
2: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
5: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
2: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
5: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
2: अनिमेश जी,
3: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
2: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
3: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
2: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
5: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था, अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
2: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
5: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम

0: में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है। कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बालाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे, गर्व व्यक्त कर रहे। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूं जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको

0: 6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
8: टायर लो, सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
10: अपोजिट
8: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
11: किदा
12: तू मिट्टी की करता
11: है, तेन व्याहना है।
12: तेरा तेन पता चल।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ, मुस्कुराइएगा आप। और साथियों, यहाँ पर वक्त हुआ है 3:11:37। और दोस्तों देखिए, आपको पता ही है कि नया महीना शुरू होने जा रहा है। आज मई का लास्ट दिन है, 31 तारीख है। और हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जून से भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा असर आप सभी की जेब पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है और बिजली बिल में बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है। ऐसे में पहले से ही गर्मी और बढ़ोतरी बढ़ते खर्चे भी हैं। और दोस्तों गर्मी से भी कहीं ना कहीं हम लोग जूझ रहे हैं, ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि हर नई परिस्थितियों में हमें नई सीख भी देती है। अगर हम बिजली का समझदारी से इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना होने पर लाइट, पंखे और अन्य उपकरण बंद रखें, तो ना सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि बिल भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों महंगाई आएगी जाएगी, लेकिन समझदारी से किया गया खर्च हमेशा हमारे काम आता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि छोटे बच्चों को भी सिखाइए, जैसे वो घर से बाहर जा रहे हैं तो पंखा ऑन छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें तुरंत। जैसे अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं, कोई काम नहीं है आपका रूम में, तो लाइट को ऑफ करें, पंखा ऑफ करें। एंड कई बार होता है कि लाइट किचन में जली रह जाती है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें, बेवजह लाइट को खर्च ना करें।

दोस्तों बचत केवल पैसों की नहीं आदत की भी होती है। छोटी छोटी सावधानियां भविष्य की बड़ी परेशानियों को कम कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। और यहाँ पर जो संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर संदेश आए हुए हैं बैक टू बैक बहुत सारे, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो खुशी मैम, कैसे हैं आप? आई होप यू आर टोटली फाइन। हमारे यहाँ मौसम, हाँ बिल्कुल जी, आपके यहाँ का और हमारे यहाँ का मौसम तो सेम है क्योंकि आप हमारे नज़दीक में ही रहते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ललिता कश्यप जी का, नवी नगर मुरादाबाद से, कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, हेलो मैम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं दुआ। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं कासिम अली जी ग्राम गोविंदपुर से, और ये हमें आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपको भी। और चलिए दोस्तों एक और खूबसूरत सा ट्रैक यहाँ पर हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। संडे की सुबह बहुत ही प्यारा सा दिन है रविवार का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, कुछ स्पेशल बनाने का, स्पेशल खाने का और ढेर सारी मस्ती करने का, घूमने का दिन होता है क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो मन करता है कि कहीं घूम कर आएँ। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, घूमने जाइए, लेकिन सावधानी के साथ क्योंकि मौसम भी इस समय चेंज हो रहा है और बदलते मौसम में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं कहीं भी घूमने के लिए, सावधानी के साथ जाइए, बाकी मुस्कुराते रहिए। और एक खूबसूरत से गाना कुमार सानू जी की आवाज़ में आप सभी के लिए

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
11: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
10: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
11: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
10: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
12: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, आज मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों, तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि धीरे धीरे जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाला जहर है। हर साल लाखों लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। एक छोटी सी शुरुआत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आज का दिन इसे छोड़ने का संकल्प लेने का सबसे अच्छा अवसर है। और यदि आप इसका सेवन नहीं करते हैं तो अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही खुशहाली जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम सब मिलकर एक स्वस्थ, स्वच्छ और नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लें। तंबाकू को कहें ना, जिंदगी को कहें हाँ। और दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे धुएं में मत उड़ाइए। अपने जीवन, अपने परिवार के लिए और अपने सपनों के लिए तंबाकू से दूरियां बनाइए। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं आपके साथ आपकी खुशी। कुछ यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। और क्या क्या पहुँचाते हैं आज की सुबह हमारी प्यारी प्यारी से श्रोता। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है पूजा जी का, विकास नगर से। और ये कहती हैं, मैम आपका शो हमने सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, वो कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू पूजा, आपने ध्यान से सुना उसके लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया अंसार हुसैन जी का, दौलतबाग मुरादाबाद से। और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर निधि जी का आया है और ये कहती हैं, हेलो मैम, कैसे हैं आप? लगता है आपका जुकाम अभी ठीक नहीं हुआ है। बिल्कुल निधि मैम, सही कह रहे हैं आप, अभी ठीक नहीं हुआ है लेकिन ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अब मैं बस जाने का मेरा वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते बस यही कहूँगी आप सभी से कि आप सब हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और अपनों के साथ रहें। अगर आपको लगता है कि कोई मदद आपसे मांग रहा है या आपको लगता है कि किसी की आपको हेल्प करनी चाहिए तो मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बिलीव इन कर्मा, जो हम कर्म करते हैं वो हमें रिटर्न में मिलता है। अच्छा कार्य कीजिए, ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से अच्छे से बिताइए और किसी के साथ, किसी के लिए मन में गलत भावना मत रखिए, ना ही किसी के साथ गलत करिए। बाकी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे बहुत जल्द 3 से 5। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
1: बहुत हो गया तेरा, चल

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।

0: बहुत जरूरी है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खोता है। और इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी कि इस दिखावे को हटाना है। तंबाकू और निकोटीन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज है, असल में ये एक लत है, एक बीमारी है जो खासकर हमारे नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही है। और इसी कड़ी में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारा साथ दे रही है टीकन देवी, यानी कि हमारी प्यारी टीकन भाभी। तो टीकन भाभी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: और मेरे प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर्ड निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे ये सुरक्षित हो, आधुनिक हो, लेकिन सच्चाई ये है सब एक ही चीज है, लत लगने के तरीके। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं,
0: जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किसकी तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल यही सच्चाई है, कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई कर लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा, लेकिन असल में वही से लत लगनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शरीर निकोटीन की आदत हो जाती है और ये सिर्फ चॉइस नहीं रह जाती है, ये एक जरूरत बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता और कोशिश और शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
0: ठीक है भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है, क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं?
1: हाँ भैया, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकर्स और सस्ते तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हैं जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जो दूसरों के धुएं के संपर्क में आ जाते हैं।
0: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते।
1: इसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तंबाकू लेता है तो उसका असर काफी बाकी सभी लोगों पर भी पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारी बढ़ जाती है, बार बार खांसी जुखाम होता है। महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान गंभीर समस्याएं हो सकती है, यानी व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भी भारी पड़ सकती है।
0: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलतफहमी है?
1: नहीं, ये पूरी तरह से एक भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम है। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे सीधे तंबाकू से जुड़े हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिसमें कई खतरनाक बीमारियां निकलती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करती हैं।
1: बिल्कुल भैया, और यही वजह है कि इसे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है, इसीलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये कदम उठाना ही होगा।
0: चिकन भाभी, कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक किसी की मतलब असली कहानी से ना जुड़े। ऐसा होता है ना कि जब तक कोई कहानी उनके सामने ना आ जाए तब तक उन्हें वो चीज समझ नहीं आती। क्या आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें और हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
1: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ हमारे ही इलाके के एक आदमी की। उनका नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर थे। सुबह से शाम तक काम करते थे, परिवार चलाते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले उन्होंने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। ऐसे धीरे धीरे एक दिन में 2 बीड़ी पीने से लेकर 10-12 बीड़ी पीने तक पहुँच गयी। उसकी पत्नी अक्सर उन्हें समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसकर टाल दिया करते थे, कुछ नहीं होता, मेरे बाप दादा भी पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करने में मुश्किल होने लगी। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। जांच में पता चला कि उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे और शुरुआती टीवी भी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी भी नहीं रुके तो हालात और बढ़ जाएंगे। उस दिन पहली बार रमेश डर गया था। उसने अपने बच्चों को देखा, अपनी पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ दिनों बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं और कहते हैं, जो शुरुआत में मजाक लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाता है।
0: सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है।
1: बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुँचाना है।
0: तो भाभी, अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे तंबाकू छोड़ना है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो वो क्या करे? क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
1: देखिए, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना, अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीज हटा दें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो चीज सामने दिखती है उतना ही मन डगमगाएगा। इसके साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी बताइए कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ सकें, आपको रोक सकें। जब आपका मन डगमगाए, आगे आगे अगर जरूरत महसूस हो, डॉक्टर या काउंसलिंग की मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकार की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जहां मुफ्त में सलाह मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं। बीच बीच में मन करेगा, मन बेचैन होगा, लेकिन अगर हर दिन खुद को संभालते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आदत कमजोर पड़ जाएगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
0: भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है? क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान ही नहीं देता है।
1: परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे आनंद। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांटने या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ जाता है। इसके बजाय उसे समझाइए, उसका हौसला बढ़ाइए, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें। घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो सकता है।
0: सच में बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी। साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। बस एक मजबूत इरादा और सही सहारे की जरूरत है, और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना बहुत जरूरी है।
1: याद रखिए, लत से आज़ादी ही असली आज़ादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी साझा करना चाहूँगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। देखिए, ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव के रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण सा आदमी था, छोटा सा खेत, पत्नी और दो बच्चे। मेहनती था, जिम्मेदार था। एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे ये आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती थी, बच्चे भी कहते थे बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही था, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता ही नहीं था। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ गए। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ, और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह का कैंसर। ये सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। अपने बच्चे, अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्च बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ उसकी सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आरजे आनंद, सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था, काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार की खुशियाँ, सब कुछ। इसलिए जो आज फैसला ले सकते हैं वो कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उनका असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
0: सच कहूँ टीकन भाभी, ऐसी कहानियाँ सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियाँ हैं, असली परिवार है और एक ऐसा दर्द जिनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर नहीं आती।
1: बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है कि हम डरकर नहीं समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं, छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी शुरुआत मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों और युवाओं को भी समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं बल्कि उसे दूर रहने में है।
0: और साथियों, याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज का होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, ना स्टाइल में ना ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में, तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक बार फिर हम मिलकर यही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा,
0: सेहत सही तो लाभ कहीं। तो दोस्तों, मैं था आपका दोस्त आरजे आनंद, अभी लेता हूँ आपसे इजाजत इस प्रोग्राम से। बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, यानी कि सेहत सही लाभ कहीं में, एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब यह है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गाँव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी ले। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का

0: ही उतर गया।
1: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
2: और यही एक भी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
0: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
2: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
0: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
1: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
2: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं, हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है, देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है, सरकारी चीज है, संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
0: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
1: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
0: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
1: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
2: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
0: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
1: पर तुमने पूछा ना?
0: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
1: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए, कहना अधिकार है।
2: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
0: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
1: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी

0: दीना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
1: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
2: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
0: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
1: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
2: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
0: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
1: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
2: ईकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
0: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
2: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
0: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
1: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
0: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें। और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है, इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो, और लोग जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
1: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
1: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
1: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
2: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
4: मैं ममता मालविया, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह, घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारी गण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का ये पावन पर्व नारी शक्ति की साधना और सम्मान का प्रतीक है। आज हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, जो तप, त्याग, धैर्य और संकल्प की देवी है। उनकी साधना हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और यही संकल्प आज उत्तर प्रदेश की बेटियों में दिखाई देता है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो पिछले 9 वर्षों में विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण की नई पहचान बना चुका है। इन 9 वर्षों की यात्रा में महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक भरोसा है, एक संकल्प है कि हर बेटी को मिले शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उसी बदलाव की, जहां एक बेटी समाज की सीमाओं को पार कर अपने सपनों को नई उड़ान देती है। तो आइए माँ ब्रह्मचारिणी के तप और शक्ति से प्रेरणा लेकर हर बेटी के उज्जवल भविष्य का संकल्प ले। मैं हूँ आपका दोस्त आज राज, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेटियां हर घर की रौनक होती हैं। इनके बिना परिवार भी अधूरा है और समाज भी। पर आज की 21वीं सदी में भी कई अभिभावक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के चलते बेटियों को पढ़ाना तो दूर, उन्हें जन्म देने से भी कतराते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही लाचार महिला की कहानी जानेंगे, जिनके जीवन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को अपना सहारा बनाया।
2: नमस्कार, मैं कंचन देवी। कहते हैं कि बेटियां देवी का रूप होती हैं, लेकिन आज भी जब घर में पहली संतान लड़की होती है तो ससुराल वाले ताना मारते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।
1: कंचन देवी एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली सरल और सहज स्वभाव की महिला है, जिनके लिए परिवार की जरूरतों को पूरा करना और उनकी खुशियों का ध्यान रखना सबसे पहली प्राथमिकता है।
2: मेरे पति हमारे परिवार का भरण पोषण करने वाले इकलौते सदस्य थे, पर कोरोना वायरस ने उन्हें भी हमसे छीन लिया। उनके जाने के बाद मानो मेरे जीने की ही इच्छा खत्म हो गई।
1: पति के स्वर्गवास के समय कंचन देवी अपनी गर्भ अवस्था के तीसरे महीने में थी। जीवन साथी को खोने के दुख के साथ आने वाली नन्ही जान के भविष्य के बारे में सोच सोच कर उनका बुरा हाल हो रहा था।
2: मैंने अपनी बेटी का नाम भाग्यवती रखा, इस उम्मीद में कि शायद उसके आने से हम सब का नसीब बदल जाएगा, और ऊपर वाले ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। हमारे गांव की आशा दीदी ने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बताया।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित CM कन्या सुमंगला स्कीम कन्या भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप को जड़ से मिटाने और लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई योजना है। आइए जानते हैं कि कंचन देवी के जीवन में इस योजना ने कैसे बदलाव लाया।
2: आशा दीदी ने जब मुझे इस योजना के बारे में बताया तो एक पल के लिए विश्वास करना नामुमकिन सा लग रहा था, पर जब उन्होंने मुझे मेरी जैसी ही दूसरी लाचार महिलाओं के बारे में बताया जो पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रही थी, तब जाके मेरे मन को तसल्ली हुई।
1: श्रोताओं, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज की असली शक्ति है। इस संकल्प के साथ शुरू हुई यह योजना आज उत्तर प्रदेश की लगभग 27 लाख बेटियों के भविष्य को संवार रही है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप को जड़ से मिटाने और लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू यह योजना न केवल आर्थिक सहायता दे रही है, बल्कि बेटियों के जन्म के प्रति समाज में एक सकारात्मक विमर्श भी पैदा कर रही है।
2: आशा दीदी और सभी महिलाओं और उनके परिवार से बात करने के बाद एक बात तो साफ समझ आ गई थी कि इस परेशानी में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे कई परिवार हैं और सभी को परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार है।
1: दोस्तों, कंचन देवी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनकी बेटी को समाज वाले बोझ समझते थे और यूपी गवर्नमेंट का उद्देश्य ऐसी पिछड़ी मानसिकता को जड़ से खत्म करना है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एक बेटी को आर्थिक सहायता दी जाती है और इस धनराशि को एक साथ नहीं बल्कि कई चरणों में दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कुल 6 श्रेणियों में लागू किया जाता है। प्रथम श्रेणी है नवजात बालिकाओं को जन्म के समय 5,000 धनराशि लाभान्वित करना। दूसरी श्रेणी है संपूर्ण टीकाकरण के बाद 2,000 की एक धनराशि से लाभान्वित करना। तृतीय श्रेणी है प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के बाद 3,000 धनराशि देना। चौथी श्रेणी है छठी कक्षा में प्रवेश के बाद 3,000 की एक रकम से लाभ पहुंचाना। पांचवी श्रेणी नवी कक्षा में प्रवेश के बाद 5,000 की धनराशि से लाभान्वित करना। छठी और आखिरी श्रेणी है उन कन्याओं की जिन्होंने 10वीं या 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की हो और वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो तो उनको भी 7,000 की धनराशि दी जाती है। दोस्तों, हमारी और कंचन देवी की बातचीत यूं ही चलती रहेगी, पर फिलहाल वक्त है सुनने का संबंधित विभाग से अधिकारी के इस संदेश को।
3: मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं मूलतः उप निदेशक पद पर हूँ और जिला प्रोबेशन अधिकारी का मैं अतिरिक्त रूप से प्रभार मुझे दिया गया है, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्रारंभ किया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, साथ ही साथ बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसमें 6 चरणों में जन्म से लेकर के उसके स्नातक तक के जो 6 चरण निर्धारित किए हैं सरकार ने, उसमें कुल मिलाकर 25,000 रुपए की धनराशि सरकार विभिन्न चरणों में देती है। इसका जो उद्देश्य है कि बेटियों को न सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा में आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, बल्कि उनके शिक्षा में कोई व्यवधान ना आए, किसी कारणवश उनकी स्कूल की फीस ऐसा ना हो कि ना जमा हो पाए। इन सब चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जन्म के समय ही उनको 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। जैसे किसी बालक का जन्म होता है 5,000 रुपए की राशि, उसके बाद सरकार की तरफ से एक वर्ष में बहुत सारे टीकाकरण मान्य किए गए हैं, उनको अनिवार्य रूप से लगाना है और जब एक वर्ष के अंदर सभी टीकाकरण पूर्ण हो जाएंगे तो उनको 2,000 रुपए की धनराशि उनके खाते में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो तीसरा चरण है वो जब बेटी बड़ी हो जाती है और कक्षा एक में प्रवेश होता है उसका, तो उसको 3,000 रुपए की धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है। इसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपए, कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000 रुपए और हमारी अंतिम श्रेणी है छठवीं श्रेणी, इसमें 10वीं या 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने पर या फिर 2 वर्ष से अधिक जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें प्रवेश लेने पर हम 7,000 रुपए की धनराशि देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि लाभार्थी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर या नियरेस्ट साइबर कैफे में या किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर के अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है। ये टोटली निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। और इसका जो वेब पोर्टल का मैं एड्रेस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि mksy.up.gov.in mksy.up.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी लाभार्थी अपना फॉर्म सबमिट कर सके। यहाँ पर मैं चीज और बताना चाहूंगा कि ये योजना स्वयं में अपने आप में यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि इसमें एक अनिवार्य शर्त है कि इस परिवार का आकार 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हमारे किसी परिवार में अगर 3 बच्चे या 4 बच्चे इससे ज्यादा है तो पात्र नहीं रह जाता है वो परिवार। और यदि उस परिवार में दोनों बेटियां हैं, अगर एक बेटियां हैं तो एक का भी लाभ मिलेगा, अगर दोनों बेटी हैं तो उन दोनों बेटियों को लाभ मिलेगा। यदि एक शर्त है और इसमें जोड़ी गई है, अगर दूसरे प्रसव में 2 जुड़वां बेटियां हो जाती हैं तो दोनों बेटियां ही पात्र होंगी। मतलब कुल मिला के जब जुड़वां होती हैं दूसरे प्रसव में तब 3 बच्चों की जो हमारी अनिवार्यता है वो शिथिल हो जाती है और उनकी जो परिवार की जो वार्षिक आय सीमा है वो 3,00,000 रुपए है। 3,00,000 रुपए से ज्यादा आय सीमा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का निवासी जरूर से जरूर होना चाहिए और जितने भी हमने चरण बताए हैं उनका कोई ना कोई अभिलेख होना चाहिए, जैसे जन्म के समय का, टीकाकरण के समय का, कक्षा 1 में प्रवेश का, कक्षा 6 में प्रवेश का, कक्षा 9 में प्रवेश का, मतलब जितने भी प्रवेश हुए कक्षाओं में उनका शैक्षिक अभिलेख जरूर होना चाहिए। ये योजना बहुत सरल है, किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है, कभी भी इसका लाभ लिया जा सकता है। सालों भर इसके फॉर्म जमा होते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं। कभी भी किसी फॉर्म को भरने में समस्या आ रही हो, फॉर्म सबमिट हो गया हो, आगे लाभ नहीं मिल पा रहा हो, कोई चीज गलतीवश एंट्री हो गई, उसको संशोधन कराना हो या अन्य कोई भी जानकारी हो, तो यहाँ मुरादाबाद में विकास भवन में कमरा नंबर 42 में कोई भी लाभार्थी कोई भी आ सकता है कार्य दिवस में। इसके अतिरिक्त एक सीयूजी नंबर है, मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को बताना चाहूंगा कि नोट कर लें, 7518024010। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 7518024010। ये 24 आवर ये नंबर कार्यरत रहता है। किसी भी लाभार्थी को किसी तरह की समस्या हो रही है, फॉर्म भरने से लेकर के लाभ मिलने तक किसी भी चरण में कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।
0: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मेरी बिटिया को उसकी पहली धनराशि उसके एक वर्ष के टीकाकरण के बाद मिली। हमारे गांव की आशा दीदी और ANM ने भी मेरी खूब सहायता की, जनसेवा केंद्र में ले जाने, वहां योजना में पंजीकरण करवाने और सभी कागजातों को सही तरीके से ऑनलाइन जमा करवाने में इन दोनों की बड़ी भागीदारी थी।
1: दोस्तों, योजना का लाभ उठाने के लिए ये जरूरी है कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होता है। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। वो परिवार जिनकी अधिकतम 2 ही बच्चियां हों, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे होने चाहिए। किसी महिला का द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं, वो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमान्य होता है। और यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतान को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप नजदीकी जनसेवा केंद्र या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in या फिर mksy.up.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मन में विचार आता है कि अगर सरकार की ये योजना नहीं होती तो शायद मेरे जीवन से दुख के काले बादल कभी नहीं घटते। हमारे जैसे असहाय लोग जिनका साथ खुद के रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं, उनके बारे में योगी जी की सरकार ने सोचा। आज मैं गर्व से अपनी बेटी को अपना अभिमान मानती हूँ और उसकी परवरिश को लेकर निश्चिंत रहती हूँ। हमारे लिए इतना सब सोचने और करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, सरकार की इस योजना ने कंचन देवी के जीवन के बड़े दुख को तो खत्म किया ही, साथ ही समाज में उन्हें और उनकी बेटी को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार है। ऐसे कई सारे लाभार्थियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ और ढेर सारी जानकारियाँ हम आपके लिए आगे ही लाते रहेंगे, पर उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा मेरे यानी आर्जे राज के साथ, सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। जल्दी ही मुलाकात करेंगे और एक और ऐसी खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद,
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
0: कॉल 8826213131।
8: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

0: स्वागत है दोस्तों साथियों आपका, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, आज तो मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत थक गया हूँ, और ये मैं सच में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल स्वागत करते हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पसंदीदा सेहत सही लाभ कहीं, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन थोड़ा ठीक नहीं गया मेरा, लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आस पास।
1: अरे आरजे आनंद, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी तो है, पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है? सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ जय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती हैं। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ओआरएस भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ओआरएस क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ओआरएस बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ओआरएस बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ओआरएस का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, गर्मी में पानी के साथ ओआरएस दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
0: भाभी ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
1: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी हवा मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं, तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
1: ऐसे स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
0: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
1: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
0: साथियों आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
0: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
1: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
0: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए, और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का। एक बार फिर से ये लीजिए, अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
2: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
1: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
2: गर्मियों में दिन में पसीना,
1: हाँ, रात में मच्छरों ने जीना कर दिया दुश्वार मुश्किल नहीं, ये तो है यार। खैर श्रोताओं, मैं और अखिल जी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम हमने आपको बताया सोच बदलो, और आज हम किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जरूर आपको पता लगेगा, जिससे कि इसका नाम ही है सोच बदलो। अखिल भाई, आप पहली बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इसका नाम है सोच बदलो, तो कुछ मतलब नाम से कुछ लग रहा है आपको कि इसका क्या टाइटल ऐसा है, तो अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम?
2: आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ हालात नहीं बदलते हैं जब तक इंसान भी अपनी सोच नहीं बदलता है।
1: तो ये तो है,
2: जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे या किसी चीज को लेके अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो अपने हम हालात भी नहीं बदल सकते।
1: गॉट इट, 100% सही कहा आपने, लेकिन हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल हर इंसान परेशान है, कोई करियर को लेके, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई खुद से हार चुका है। तो आज इन सब मुद्दों पर बात करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सोच बदलो है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता तब तक चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे।
2: नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
1: वाह,
2: सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
1: करेक्ट,
2: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।
1: वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात कही है अखिल जी ने, और बिल्कुल सही बात है। जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
2: छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी
1: जी,
2: कभी
1: जी,
2: वो जिंदगी में लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आती
1: है। करेक्ट, और छोटी सी शुरुआत ही जो है हमें जीवन में वहां तक पहुंचा देती है जहां हम जानना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। एक सवाल, अगर सुबह उठते ही इंसान ये सोच ले कि आज भी कुछ खराब होगा तो क्या दिन अच्छा जाएगा?
2: बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है
1: जो हम बताते हैं।
2: बिल्कुल सही, वही दिमाग हमारी चीज ढूंढ रहा होता है।
1: और अभी फिलहाल मेरा और आपका दिमाग ढूंढ रहा है एक छोटा सा म्यूजिकल।

0: ब्रेक, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा म्यूजिक वाला तब तक हमारा दिमाग भी ढूंढता रहेगा गाना कहाँ है, गाना गाना आ गया आपका फेवरेट गाना। एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैं और अखिल आपके ही में जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
0: वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक है। इस ब्यूटीफुल गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी अखिल जी, कुछ कह रहे थे आप अभी?
1: मैं यही कह रहा था कि आजकल लोग छोटी सी परेशानी में भी बोल देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं, सभी इंसान इस चीज पे बिलीव करते हैं और सभी बोलते हैं। मोस्टली हर इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है या उसका कोई काम नहीं बनता है तो ये चीज को जरूर बोलता है। अखिल भैया, लाइन क्या बोली थी अभी आपने? वो
2: ऐसे बोल दो
0: जी भैया,
1: ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है।
0: और ये जो लाइन है ना, ये अखिल भैया आपने ही, मुझे लगता है दुनिया का हर दूसरा इंसान बोल रहा होता है। करेक्ट,
1: बिल्कुल सही।
0: दोस्तों, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएं और ये वो टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जो एक्चुअली हमारी और आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं।
1: अब देखो ना, अगर बारिश हो रही होती है तो कोई बारिश को देखकर ये बोल देता है ओह आज तो ट्रैफिक होगा, बारिश हो रही है, और कोई उसी बारिश को देख के कहता है अरे आज मौसम कितना प्यारा हो गया।
0: बस अपने अपने देखने का तरीका है, नजरिया है ना। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हुई है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अखिल भाई
1: बिल्कुल सही बात कही।
0: चलो,
1: अरे आनंद भाई, कभी कभी ना अगर कुछ लोग इतने नेगेटिव मिलते हैं कि अगर आप उन्हें फ्री में पिज्जा भी दो ना तो ये कहेंगे आपसे अरे कहीं कोल्ड पिज्जा तो नहीं दे दिया, कहीं ठंडा तो नहीं दे दिया हमें।
0: मतलब पिज्जे के अंदर भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो फिर पक्का उन्हें सोच बदलने की जरूरत है। और श्रोताओं, मुझे ऐसा लगता है कि सोच अगली बात से डेफिनेटली बदल जाएगी। और कुछ लोग अखिल भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, आप यकीन मानिए कि मतलब अगर उनके घर में उनका वाईफाई ना भी चले तो भी भैया उनको ये लगता है कि चलो आज वाईफाई ना चला ना सही, एटलीस्ट फैमिली से तो बतिया लेंगे भाई।
1: हाँ,
0: फैमिली से तो बात कर लेंगे। और ये जो गेट टुगेदर वाला टाइम होता है ना, ये एक अलग ही होता है और यहीं पर निकल के आती है पॉजिटिविटी। अगर आपका, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा श्रोताओं, अगर कोई काम आप कर रहे हो और अगर वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल या वो नहीं बन पा रहा है तो आप सोचिए उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, अखिल भाई ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और वो हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है यार ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, जबकि थोड़े दिन के बाद उससे भी बेहतर से बेहतरीन हो रहा होता है। फिर हमें लगता है कि यार अगर वो चीज हो जाती तो शायद ये नहीं होता।
1: बिल्कुल सही बात। तो जिंदगी कहाँ परफेक्ट होती है? जिंदगी परफेक्ट कहाँ होती है? नहीं होती ना जिंदगी परफेक्ट। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो वो और सफर थोड़ा सा और आसान हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे भी लगता है कि दोस्तों जिंदगी देखो परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकती, ना ही इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक गाना जो मैं लगा रहा हूँ ये जरूर परफेक्ट हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, प्रोग्राम है सोच बदलो। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। भैया बजाते रहो या गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो या बजाते रहो, बात एक ही, फिलहाल हम बजा रहे हैं गाना।

0: और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें जिसकी भागदौड़ में छोटे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाए। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे, और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। टाइम पे क्या करना है भाई, क्या हम 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई?
1: बिल्कुल सही बात कही। और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना है क्यों है?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। तो गाइज, यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुरानी
0: मेमोरी याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ कहाँ घूम के आए हुए हैं भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे आ गया है जैसे मतलब बिना टमाटर के सब्जी नहीं बनती, वैसे इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना क्या दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल
0: अनाप शनाप डाला और उसके इतने व्यूज आ गए, इतना वायरल हो गया वो बंदा। अभी किसी और की बात क्यों करें, कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई। कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है यार फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है।
0: वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी हाईलाइट ही दिखाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है पूरी कहानी वो किसी को नहीं पता।
0: पॉइंट तो है। और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही चीजें कर देते हैं भाई। तो दोस्तों आपको अपनी जो है ना सोच को एकदम सही रखना है। जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। आज भी आप YouTube पे एक इन्फॉर्मेशन डालोगे उसके इतने इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा सही क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हमें सही डायरेक्शन में चलना है। और अभी एक और डायरेक्शन है जहां हमें जाना चाहिए मुझे और अखिल भाई को, वो है एक म्यूजिकल ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है ना उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था 2 महीने हो गए तक आया क्यों नहीं। तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती
1: है। इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा।
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच्चा है तू मेरा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चार लाइने, चंद लाइने सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन से सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज में।
1: अच्छा आनंद, तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: तुम्हारा सोना है ना, वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार, और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थी आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना, हाँ। भाई साहब हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइनें कही थी, वो लाइनें मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल, इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी।
1: बिल्कुल सही
0: है ना?
1: बात
0: है। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं।
1: हाँ।
0: ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे
1: हैं? मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ,
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना, उसकी टाइमिंग अलग है।
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर्स सेट है,
1: एक अलग ही टाइमलाइन चल रही है, तो वो अच्छी ही चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव दें।
0: अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: हम स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसपे हमें ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेस आता है, मुझे ऐसा लगता है, छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना? तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते हैं?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% अग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट।
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं, जब तक फेलियर्स से आपका सामने नहीं होगा तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो, इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे तब नहीं सीखते, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे, बिकॉज वो जो फेस होता है ना वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद,
0: हाँ,
1: में फेल हुए, बिजनेस नहीं चला या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना?
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट, तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड हैं तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। बट अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना आप कहां पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पता है आपकी मंजिल कहां है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है, और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात
0: है ना, क्या इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: हाँ जी, ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं। आनंद,
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे और आपको यहाँ बिठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपने सुना है गाना?
1: सुना है।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है
0: आमिर खान साहब ने, अरे गजब। और ये उदित साहब का भी कमाल है, उदित नारायण जी ने जब ये गाना गाए थे तो भाई साहब उनकी भी रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, उदित साहब की आवाज है ना।
1: देखा एकदम आपका जो थे जितने भी फेलियर्स थे सभी एक उस गाने से सक्सेस।
0: एब्सोल्युटली यार। और आमिर खान की भी फर्स्ट मूवी थी क्यामत से क्यामत तक मूवी है, इसमें आमिर खान साहब को अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखना, उनका जो फेस है एकदम यंगर वाला, क्या लग रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, अगर हम इन्हीं पे बातें करेंगे तो पूरा स्टोरी निकल जाएगा, गाना नहीं सुन पाओगे, तो पहले गाना सुनो उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: ही इज लाइक इन एक्टिव और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीजें थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
1: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है एक्चुअली, एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था, लाल सिंह चड्ढा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे, तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा, तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद, तो कह रहे मैंने कहा मैं आमिर खान से बात करूं, आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहां से हो, मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट ये वो, तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहां के डायरेक्टर से बात करता हूं जो वहां का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं, बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्ढा की मूवी के ऊपर, तो फिर मैंने बना दिया, मुझे बड़ा मजा आया भाई जब मैंने बनाया, तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई, वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है जाना था मुझे बस के अड्डा लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्ढा इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएटिव, एक दो लाइन और बोली थी वो शायद मेरे पास मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस,
0: हमारे साथ ये वाला वाक्य हो गया कि पापा कहते हैं
1: बड़ा नाम करेगा हाँ, बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान, और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई है यार ऐसी, तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से इतना ज्यादा एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो मतलब आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है, जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है, और ये अखिल जी जो बैठे ना ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
0: मैं बताना चाहूंगा आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है, उनकी एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
1: तो दुबई
0: नहीं नहीं नहीं गुड़गांव में,
1: किंगडम ऑफ ड्रीम्स अच्छा ओके,
0: तो वहाँ पे ना इनकी शूटिंग थी पीके मूवी की,
1: पीके ओके आमिर खान और अनुष्का,
0: हाँ अनुष्का शर्मा, और दोनों ही आए थे उस गाने को शूट करने के लिए, दोनों ही लोग आए थे, तो मेरी मतलब आमिर खान साहब का तो शॉट रात में था, और रात में आप मतलब मानोगे नहीं, रात में एक दो बजे भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के एकदम ताजा उठे हुए और वो शूट कर रहे थे, और उस बीच उनका एक
1: मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम मॉर्निंग वाली थी,
0: इतने एक्टिव कुछ पूछो मत, और उस शूट में एक मजे की बात और थी कि उन्हीं के बेटे जुनैद खान वो उसमें असिस्टेंट थे,
1: ओ वाओ क्या बात,
0: सॉन्ग के असिस्टेंट थे,
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ये तो जानकर हमें बहुत खुशी हुई अखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने ये कड़क अपडेट हमें बताई, और अगर हम कभी आमिर खान से मिले तो जरूर आपका मैसेज तक पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप हमसे पहले मिले तो हमारा पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम है सोच बदलो, और उनका पीके मूवी का इन्होंने जिक्र किया, तो एक मीम बहुत वायरल होता है, अच्छा हमें सिखाएगा, अच्छा हमें बता दिया है, आई एम श्योर आपने देखो ना, और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोल रहे ना, अच्छा हमें सिखा दिया है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 105 चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार, एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप,
0: बिल्कुल सही,
1: और दोस्तों ये सिर्फ एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है, सो वेल ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे,
0: मैं तो कहूंगा यही
1: जी भैया,
0: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता,
1: वाह,
0: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं आनंद,
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं हरा सकता, करेक्ट, तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है, कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, आप भी अच्छा सोचिए ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा, और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को देख देख ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही है और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
0: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
1: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड़ पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद पर भरोसा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन जाती है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दिया अखिल जी, और बहुत ही बड़ी बात ही है मुरादाबाद के युवाओं के लिए। बस यही एक प्यारा सा मेरी तरफ से भी संदेश रहेगा कि दोस्तों जिंदगी में ये मत सोचिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करते हो ना, वही सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम होता है।
0: अपने साथ स्माइल रखनी है बस हमेशा,
1: करेक्ट, आपने स्माइल के साथ आगे बढ़िए, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हम भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे से गाने की प्रस्थान करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और थोड़े से कूलर शूलर भी चला लीजिए।
0: थोड़ा नहीं, कूलर तो पूरा ही चला,
1: मतलब हाँ भाई यार पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी,
0: बाय बाय। रेडियो बजाते रहो,
1: गुनगुनाते रहो और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय
0: बाय।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
7: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
8: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर,
9: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
8: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत,
9: कनेक्टिविटी से समृद्ध। यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
7: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
10: यह किया उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
11: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
10: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
11: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
10: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
11: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
10: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
11: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
10: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
11: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
10: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
11: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
10: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
12: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
11: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
12: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
10: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
11: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
10: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
11: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
10: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
11: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
10: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
13: नेवी, एयरफोर्स,
14: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
13: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
10: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
16: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
15: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
1: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को

0: कारण है। शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है, इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या ना पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको संभालने में,
0: बच्चों को संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं।
0: हाँ।
1: आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूजे, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं। और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए, सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर। सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, दोपहर के इस खूबसूरत से सफर में आपका दिल से स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो। जी हाँ, बिंदास बोल, ये है आपका अपना पहला प्यारा सा रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और यहाँ पर बातें होंगी दिल की, मुस्कान की सौगात, आपकी राय, आपके किस्से और आपकी पसंद की बातें। तो तैयार हो जाइए अगले 2 घंटे तक, जी हाँ, खुलकर बोलने का मौका आपको मिलेगा, मुस्कुराने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब शुरू हो चुका है बिंदास बोल, जहाँ पर आप बिना झिझक के आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, हमें संदेश पहुँचाने होंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अगले 2 घंटे हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं आज शो में। और कुछ सवाल भी हम आपसे मालूम करने वाले हैं, जिसके आप जल्दी से जवाब हमें पहुंचाएंगे। अभी तो हम आए हैं, अभी शुरुआत हुई है शो की, आगे आगे देखिएगा क्या क्या होता है। तो आप तैयार हैं ना? ओहो, मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। देखिए साथियों, वक्त की अगर बात करें तो समय हुआ है 3:07 और बहुत ही खूबसूरत सी दोपहर है, रविवार का दिन है एंड तारीख है 31 मई की। और देखिएगा, साल का 5वां महीना भी कंप्लीट होने वाला है, लास्ट डे है आज। और कब हम साल के 6th मंथ में पहुंच जाएंगे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ना। कितने सारे खुद से प्रॉमिस किए थे आपने कि इस साल तो मैंने जो नहीं किया 2025 में, वो 2026 में मेरे को करना है, अचीव करना है। उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे ही मेहनत करती रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ती रहिए। और कुछ खूबसूरत गीत मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना, बहुत ही खूबसूरत आप सभी के लिए, अभिजीत सावंत जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए एंजॉय करें आप।

हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया अभिजीत सावंत जी की आवाज़ में। एंड दोस्तों, जब इस तरह के गीत हम सुनते हैं ना, तो मतलब दिल अलग ही झूमने लगता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कुछ अच्छे म्यूज़िक हमें सुकून देते हैं। एंड मैंने भी कुछ ऐसे ही गीत आपके लिए चुने हैं जो आपके दोपहर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। दोस्तों, शो का नाम है बिंदास बोल और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। एंड खुशी लेकर आती है ढेर सारी खुशी, आपको भी पता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत प्यारा सा है। एंड आप उसका रिप्लाई मुझे दीजिएगा, ठीक है? आंसर आपको देना है, बिंदास होकर बातें करनी है, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ और दोस्त से कोई बातें नहीं छुपाते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं सिलसिला। एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ही मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज कॉल का सेशन नहीं है क्योंकि मंडे टू सैटरडे आप कॉल कर सकते हैं। आज के दिन सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट अपने वॉइस नोट भी पहचान सकते हैं। अगर देखो आप नहीं चाहते कि टाइप करें, तो आप अपनी आवाज, मधुर सी आवाज में भी अपने संदेश हमें पहुंचा दीजिएगा। ये मौका हम आपको दे रहे हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। और दोस्तों, देखिए संडे का दिन है, मस्ती का दिन है ना? तो आज एक फनी सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने श्रोताओं से भी पूछ लेती हूँ। दोस्तों, मेरा जो सवाल है बहुत फनी है एंड इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अगर आपके घर में, हाँ, अगर आपके घर का कोई सामान बोलने लगे तो सबसे ज्यादा शिकायत कौन करेगा और क्या शिकायत होगी? जी हाँ, अगर आपके घर का कोई सामान बोलने लगे तो सबसे ज्यादा शिकायत कौन करेगा और क्या कहेगा? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा मोबाइल है क्योंकि हमारा जो मोबाइल है ना दोस्तों, वो हमारे हाथ से कभी, मतलब क्या कह सकते हैं, स्किप नहीं होता है। ये हमेशा हमारे हाथ में ही रहता है, हमारी नजरों के सामने रहता है। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पर जैसे मोबाइल को हम पूरे दिन चलाते हैं, तो मोबाइल बोलेगा मुझे थोड़ा सा आराम भी दे दिया करो भाई, पूरे दिन चलाते रहते हो। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर आपके घर का कोई सामान बोलने लगे तो सबसे ज्यादा शिकायत कौन करेगा और क्या कहेगा? फटाफट से अपने फनी आंसर पहुंचाएगा, नंबर मैं आपको बता दी होगी 9837896896। अब आप सोच रहे हैं कि देखिए, घर में इतनी सारी चीजें होती हैं जिनका आप रेगुलर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फटाफट से अपना खुराफाती दिमाग चलाइए और हमें आंसर पहुंचाइए। हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ बेहतरीन गीत जो आपके लिए और आपके दोपहर को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत। तो एंजॉय कीजिएगा ये प्यारा सा ट्रैक। मैं लौट कर आती हूँ फ्रॉम द मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी से। ये ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं आप सभी के लिए। आप कहीं मत जाइए, बस दिल से मुस्कुराइए और रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
8: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
10: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो का नाम है बिंदास बोल, जहां पर बिंदास होकर बातें आप करते हैं हमारे साथ। और यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एवरीवन। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल नंबर डायल करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और मैंने आज की बहुत ही प्यारा सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। एंड मैंने आपसे पूछा है, अगर आपके घर में कोई सामान बोलने लगे तो सबसे ज़्यादा शिकायत कौन करेगा और क्या कहेगा, ज़रा बताइएगा एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं और ये क्या पहुँचाती हैं आज की सुबह, आज की दोपहर, जरा जान लेते हैं हम इनके दिल की बातें। और दोस्तों, आप पीछे क्यों हैं, मैं कहती हूँ आप इतना मत सोचिए जो दिल में ख्याल आ रहा है, आप लिख डालिए, भेज दीजिए हमें मैसेज। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है सविंतिका का और ये कहती हैं, हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप। मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और भाई, मुझे लगता है कि संडे का दिन ना सोने का होता है ना। बहुत से लोग संडे को सिर्फ सोते ही हैं, क्योंकि जो वर्किंग होते हैं ना, वो एवरी डे बहुत बिजी होते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो संडे का दिन होता है कि चलिए आज हम सो लेते हैं, थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स देते हैं। और जब हम सोकर उठते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है कि सुबह हो रही है शाम हो रही है, लेकिन ऐसा कभी कभी हम अचानक से उठते हैं दोपहर में, जैसे बहुत गहरी नींद में सोते हैं ना, और अचानक से हम उठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि सुबह और ये शाम, कंफ्यूज हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सविंतिका भी कुछ ऐसे ही कंफ्यूज हो गई हैं। तभी उन्होंने गुड मॉर्निंग लिखकर भेजा है, फिर कहती हैं कि मैम कैसे हैं आप, अभी सोकर उठे हैं, जस्ट मैंने आपका शो सुना तो मैसेज किया। और ये कहते हैं कि खुशी जी, मुझे रोज़ मैं रोज़ 5 बजे उठने का 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगाकर सोती हूँ, लेकिन क्या करूँ, 5 बजे मैं उठ नहीं पाती हूँ। अलार्म तो बोलता है राइट टाइम, लेकिन मैं उसको बंद कर सो जाती हूँ। और अगर अलार्म को हमारे घर में बोलने का मौका मिले तो वो बस मुझसे यही कहेगा कि अलार्म लगाकर क्यों सजा देती हो, मैं पूरी मेहनत से आपको जगाता हूँ और आप हर बार मुझे ऑफ कर दोबारा सो जाती हो। हाँ, ये तो है, लेकिन ये 5 मिनट जो होते हैं ना, बड़े ही स्पीड में निकल जाते हैं, कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो इसलिए 5 मिनट को ना बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप 5 बजे आपको उठना है तो 5 बजे उठना ही है, ये मत सोचिए कि ओ हो अभी 5 मिनट और सो लेती हूँ, नहीं, ये गलती मत करना।

नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर दिव्या का आया है और दिव्या कहती है, हाय गुड आफ्टरनून खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे और इस समय आप आराम कर रहे हैं या फिर काम में व्यस्त हैं। हाँ ये तो आप मुझे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और ये कहती है कि मैम दिन भर मुझे मेरा मोबाइल बोलेगा, अगर इसको बोलने का मौका मिले तो ये यही कहेगा कि दिन भर मुझे हाथ में रखती हो, कभी चार्ज पर, कभी गाने सुनने के लिए, कभी रील्स देखने के लिए, मुझे भी थोड़ा आराम दे दिया करो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मोबाइल को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। आप खाते पीते हर समय फोन देखते रहते हो, फोन को थोड़ा सा साइड में रख दिया करो, बेचारा परेशान हो जाता होगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही फनी आंसर आप भी अपने पहुंचाइएगा, हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत ही प्यारा सा ट्रैक एंड बाहर हवाएं चल रही हैं तो ये गाना मुझे लगता है कि परफेक्ट है, आप भी सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से ट्रैक के उस पर।

हाई एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, एंड फाल्गुनी पाठक जी की बहुत प्यारी सी आवाज में। देखिए, हर जाए का तो यहाँ पर पता नहीं है कि वो आए हैं नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास बोल, और दोस्तों यहाँ पर समय हुआ है 3:40। और हमने आपसे कहा है कि आप भी हमारे साथ बिंदास होकर बातें कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमें मैसेज करना होगा एवरीवन, और हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ना कुछ छोटी छोटी आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे बड़ा बदलाव ले आती हैं। शुरुआत में वो मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वही आदतें हमारी पहचान और सफलता की वजह बन जाती हैं। तो आज का मेरा सवाल आपसे है, ऐसी कौन सी अच्छी आदत है जिसने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है? जी हाँ दोस्तों, आपकी ऐसी कौन सी एक अच्छी आदत है जिसने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है? आप मुझे बताइए कि वो कौन सी आदत है आपकी। मोबाइल नंबर है हमारा 9837896896। अपने अनुभव और अपनी हैबिट कौन सी है जो एक गुड हैबिट जैसे आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाया है, मुझे फटाफट से बताइएगा। शायद आपकी एक आदत किसी और की लाइफ को चेंज कर सकती है। मुझे इंतजार है आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, और यहाँ पर कुछ खूबसूरत गीत मैंने आपके लिए चुने हैं, तो फटाफट से उन्हें प्ले करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं और आपसे करेंगे कुछ गुफ्तगु। तो आप कहीं मचाइए, दिल से मुस्कुराइए और अपने संदेश भी हमें पहुँचाइएगा। मैं आपके साथ आपकी खुशी

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
4: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
3: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
4: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
3: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
5: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: ओए होए, इतना सोना गाना सुनकर तो आप ख्यालों में खो गए हो। हाँ एवरीवन, हेलो जी, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे ही होंगे और इस समय कार्यक्रम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसे ही बेहतरीन नगमे, बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रैक आज सेलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए, ताकि आपकी दोपहर और ज्यादा खूबसूरत हम बना पाए। पूरी कोशिश करते हैं, आई होप आप कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे होंगे। एवरीवन, और ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगी, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत लता मंगेशकर जी साथ में उदित नारायण जी की खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा सा गाना आपने सुना। और दोस्तों, आज मैंने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। मैंने आपसे पूछा है दोस्तों, आज की खूबसूरत सी संडे की दोपहर में, ऐसी कौन सी एक अच्छी आदत है जिसने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया है? जी हाँ, आपकी ऐसी एक कौन सी अच्छी आदत है जिसने आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाया है? और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ गए हैं। हमारे पास यहाँ पर रिया जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से, और ये कहती हैं, खुशी मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आपने पूछा है कि एक ऐसी कौन सी अच्छी आदत है जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया है, तो ये कहना चाहती हैं, मैम मेरी सबसे अच्छी आदत है जिसने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया है, मेरी सबसे अच्छी आदत हर रोज सुबह 4 बजे उठना। रिया कहती हैं कि पहले मुझे लगता था कि जल्दी उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और शांति भरा वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है। दिन की शुरुआत बिना किसी भागदौड़ के होती है, जिससे पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से बना रहता है। एंड ये कहती हैं, सुबह जल्दी उठकर मैं अपने लिए समय निकाल पाती हूँ, अपने लक्ष्य तय कर पाती हूँ और मन को शांत रखती हूँ। इस आदत ने मुझे अनुशासित बनाया है, आत्मविश्वास बढ़ाया है और जीवन को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना दिया है। मेरा मानना है कि अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आदत जरूर अपनाएं। थैंक यू सो मच रिया, आपका मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल था और मैं भी एवरी मॉर्निंग जल्दी उठती हूँ। अच्छा लगता है सुबह सुबह जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो लाइक हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं और हमारे सारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देर से उठते हैं तो दोस्तों हमारे सारे काम लेट होते हैं, और जब काम लेट तो फिर गुस्सा भी आता है, और जब गुस्सा आता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सारी चीज़ें टाइम टेबल के अनुसार होती हैं, टाइम के अनुसार होती हैं और आप चीज़ों को बेहतर से कर पाते हैं। तो आप भी मुझे बताइए कि आपकी एक गुड हैबिट कौन सी है, एक अच्छी आदत जिसने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। फटाफट से अपने मैसेज हमें पहुँचाओ, नंबर है 9837 8986 8986। और कुछ खूबसूरत गाने सुन लेते हैं यहाँ पर। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। मैं लौट कर आती हूँ इन प्यारे सी गानों के इस पर।
1: लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं,

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
6: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, शो चल रहा है बिंदास बोल, जहां पर बिंदास होकर बातें होती हैं। और समय हुआ है 4:05 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और दोस्तों, जैसे ही हमने एक सवाल आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइएगा आपकी कौन सी ऐसी अच्छी आदत है जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया है, एंड हमारे पास मैसेज आया है अमित शर्मा जी का। और ये कहते हैं, नमस्कार खुशी मैम, आपको भी नमस्कार सर। ये कहते हैं, आपने पूछा है कि ऐसी कौन सी अच्छी आदत है जिसने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, और मेरे लिए वह आदत है परिस्थितियों में सकारात्मक सोच बनाए रखना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी काम में परेशानियां आई, कभी रिश्तों में, तो कभी हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि अगर सोच सकारात्मक हो तो मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। मैंने शिकायत करने की बजाय हर परिस्थिति में कुछ सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे तनाव कम होने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा और जिंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। आज भी जब कोई समस्या आती है तो मैं खुद से कहता हूँ कि ये समय भी गुजर जाएगा। इसी के पीछे भी कोई खास इन्होंने बोला है कि इसके पीछे भी कोई खास वजह है, और वो है मेरी मिसेज जो मुझे मोटिवेट करती हैं, और मेरी थिंकिंग जो मुझे मेरे जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। थैंक यू सो मच अमित शर्मा जी, आपने बहुत ही खूबसूरत अपनी हैबिट के बारे में हमारे साथ शेयर किया। और सच में दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोचते हैं ना, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारी सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हम उनका इजीली सामना कर पाते हैं।

और हमारे पास यहाँ पर पूजा वर्मा जी का मैसेज आया है, अभी लौट कर आते हैं तो ये भी हम आप सभी से साझा करेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताइए आपकी कौन सी एक अच्छी आदत है जिसने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। हाँ हाँ इतना सोचो मत, बताइए। आज मौका मिला है विनाश बोल शो में आपको बताने का अपनी एक अच्छी सी आदत कौन सी है, जल्दी से फटाफट से मैसेज करो। नंबर है 9837896896 और मैं सुनवाती हूँ एक और शानदार गाना आप सभी के लिए। बस आप कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए और खुशी आपसे कहती है अगर चाय कॉफी पीने का मन है तो पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों पानी भी पीते रहिए। देखिए चाय कॉफी तो चलता ही है लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है आपकी सेहत के लिए। और एक शानदार सा ट्रैक आप सभी के लिए, आप कहीं मचाइएगा, बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया अरिजीत सिंह साथ में हर्षदीप कौर की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छाता लेकर जाइएगा क्योंकि बारिश ऑलरेडी हो चुकी है बाहर। और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी। समय हुआ है 4:19। शो का नाम है बिंदास बोल। और आज हमने बहुत ही सिंपल सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपकी एक कौन सी ऐसी अच्छी आदत है जिसने आपकी पूरी जिंदगी को, लाइफ को चेंज कर दिया है। और यहाँ पर खूबसूरत संदेश आपके बैक टू बैक आ रहे हैं, तो उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। एंड दोस्तों, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो फटाफट

मैसेज टाइप कीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और मेरे पास यहाँ पर मैसेज आया है पूजा वर्मा जी का। ये कहती हैं कि मैम, मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली आदत है हर रोज कुछ नया सीखना। मैं चाहे कितने भी व्यस्त रहूं, हर दिन कुछ नया जानना या सीखने की कोशिश जरूर करती हूँ। कभी कोई अच्छी किताब या एक पन्ना पढ़ लेती हूँ, कभी कोई नई जानकारी हासिल कर लेती हूँ। इस आदत ने मुझे आत्मविश्वासी बनाया है। अब मुझे लगता है कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक नया अवसर मिला है। मेरा मानना है कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। एग्जैक्टली राइट, आई एग्री विद यू पूजा। क्योंकि जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं, उसी दिन हमारा विकास रुक जाता है। इसीलिए मैं सभी से कहूंगी कि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत जरूर अपनाएं। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बातें हमारी प्यारी सी पूजा जी ने हमें समझाई है, साझा किए हमारे साथ, कि किसी की जिंदगी सकारात्मक सोच ने बदली तो किसी की जिंदगी सीखते रहने की आदत ने। सोच अगर हमारी बदलती है तो वो हमारी सकारात्मक सोच से बदलती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ यकीनन मानिएगा अच्छा ही होता है। और सच ही कहा गया है कि अच्छी आदतें छोटी छोटी जरूरी होती हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए आप भी अपनी जिंदगी में अच्छी आदतों को अपनाइए और लाइफ को खूबसूरत बनाइए। और आप भी मुझे अपने संदेश पहुंचाइएगा एक खूबसूरत सा गाना। देखिए, बारिश हो रही है बाहर, तो एक ट्रैक तो बनता है यहाँ पर आज की इवनिंग में, प्यारा सा गाना आप सभी के लिए। देखिए, अब बारिश हो गई है, आपका मन कर रहा है कि चलिए चाय पकौड़े बना लेते हैं या फिर समोसे मंगवा लेते हैं और गर्मा गर्म चाय बना लेते हैं, है ना? ये मन में इरादा है तो बनाओ और खाओ, पियो, ऐश करो मित्रा। इतना खूबसूरत सा दिन है, शाम प्यारी सी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा टाइम आता है ना, तो अपनी फैमिली के साथ हम स्पेशली होते हैं, तो इस पल को ना मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन है कुछ स्पेशल बनाने का, खाने का, तो खाओ पियो बनाओ, उसके लिए मेहनत तो करनी होगी ना। अब आप सोच रहे हैं बैठे बैठे सारी चीजें हो जाएं, तो ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना। चलो अभी आप चाय बनाने की तैयारी करो और तब तक मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनवाती हूँ आज की शाम। इंजॉय कीजिएगा।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है आरजे खुशी आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अगर बात करें यहाँ पर तो श्रोताओं, वक्त हुआ है 4:30 और अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया दिलजीत दोसांझ साथ में बादशाह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और दोस्तों, आज मैं आपसे सफर के दौरान सुरक्षा को लेकर एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। अक्सर हम ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय जल्दबाजी करते हैं, कोई दरवाजे पर खड़ा रहता है, कोई धक्का मुक्की करता है, तो कोई जल्दी ट्रेन में चढ़ना या फिर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसीलिए जब भी ट्रेन से सफर करें, दरवाजे पर ना खड़े रहें, धक्का मुक्की ना करें और पहले उतरने वाले यात्रियों को आराम से उतरने दें, उसके बाद ही ट्रेन में चढ़ें। याद रखिए दोस्तों, कुछ मिनट की जल्दी से ही ज़्यादा कीमती आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपने सफर को खुशहाल बनाइए। दोस्तों, घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए सफ़र में जल्दबाजी नहीं, समझदारी दिखाइए। और दोस्तों, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और एक्चुअली मैंने देखा है, जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं लोग, तो सामने वाले यात्रियों को ना तो वो चढ़ने देते हैं और ना ही वो खुद मतलब उतरने भी नहीं देते हैं और चढ़ते भी नहीं है। इतनी मतलब भीड़ क्रिएट हो जाती है वहाँ पर उस समय पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में लोगों को समझना चाहिए, जब यात्री उतरेंगे तभी तो ट्रेन में चढ़ पाएंगे ना। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखो और बाकी मुस्कुराते रहो। कुछ और भी यहाँ पर गाने हैं आप सभी के लिए, लेकर आई हूँ मैं आज की शाम। देखिए, मौसम बहुत सुहाना है और इस सुहाने से मौसम में अगर कुछ आपका चटपटा स्पाइसी खाने का मन है तो गर्मा गर्म बनाओ आलू के पकौड़े। क्या खाने का मन है यहाँ? समोसे लेकर आए हैं आप? अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप समोसों की लुफ्त उठाइए। हम आपको एक शानदार गाना यहाँ पर सुनवाते हैं जसमानक जी की खूबसूरत सी आवाज़ में, बहुत प्यारा ट्रैक आप सभी के लिए।

हेलो एवरीवन, अगेन आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने तलविंदर जी का बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया, पल पल जीना मोहाल। मैंने कहा चलिए आज की शाम अपने दोस्तों की खूबसूरत बनाते हैं और कुछ बेहतरीन ट्रैक भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, बाहर बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही हैं और उम्मीद है कि आज की हमारी बातचीत आपके दिल को छू गई होगी। याद रखिए, जिंदगी भी ना बारिश की तरह होती है, कभी धूप, कभी बादल, कभी तेज बरसात, लेकिन हर मौसम हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और हर पल को प्यार से जीते रहिए। क्या पता कौन सा पल एक खूबसूरत याद बन जाए। मैं आपकी दोस्त अब आपसे जाने की अनुमति चाहती हूँ, मिलेंगे फिर आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और बारिश की इन फुहारों की तरह अपनी खुशियां भी चारों ओर बिखेरते रहिए। अपनों के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
5: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे

0: के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, 20,000 रूपए डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है, बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या है? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, ओटीपी या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी ओटीपी और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। ओटीपी, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूँगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, ओटीपी और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।
1: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 MHz मुरादाबाद, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची, कैसे हो आप?
2: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैं हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
1: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
2: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं, पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
1: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
2: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कंफ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
1: मुरादाबाद के दोस्तों, याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
2: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
1: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ तीन चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
2: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों बच्चों में कंपैरिजन और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है, बच्चों को वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमोसफियर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल सही बात कही। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का भाई हमारे पड़ोस में, वो IIT में है।
2: अच्छा।
1: पर हाँ, पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब में, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और कई चीजों पे जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर। वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं, मगर क्या है बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है सुबह सुबह, यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
2: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
1: बिल्कुल सही कह रही है प्राची जी। चलिए हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: चलिए मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। तो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896। तो सुनते रहिए हम अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज। हमारे इस कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है।
1: तो आज अखिल आप क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
1: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारे फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
0: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
1: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। होम बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
0: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार। जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहाँ पे भी भाई मोड़ पे भी, वहाँ पे ही मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहाँ पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
1: बस प्लीज आप ज्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
0: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं, हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
1: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ। बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे एफएम मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद FM 89.6 MHz, आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का मतलब है फर्स्ट टाइम इन लर्निंग।
0: लाइफ में गिरना अलाउड है, मगर रुकना अलाउड नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों, लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
0: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
1: पर दोस्तों टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हो प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी अपना भी वहाँ रुक जाती है।
1: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप है प्राची और अखिल के साथ, और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। तो अखिल आप शुरू करिए।
1: अच्छा ये बताओ प्राची, सक्सेस या स्लीप?
0: सक्सेस, स्लीप बाद में।
1: चाय या कॉफी?
0: करियर टेंशन में थोड़ी बहुत चाय सही है।
1: अच्छा गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप?
0: दोनों, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही, चाहे कुछ भी कर लो बस मम्मी जरूर खुश रहनी चाहिए।
0: हाँ अगर मम्मी खुश है तो सब खुश है।
1: तो मम्मी को खुश करने के लिए चलिए कोई गाना बजाते हैं।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया, ये नालायक विवेक बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना। मामा तू लाओ इधर। चलो मामा जल्दी लगाओ।

0: गाएगी।
1: तो दोस्तों आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
2: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना हमें जरूर मैसेज करो।
1: तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

नमस्कार, मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और अभी वक्त है एक महत्वपूर्ण जानकारी का। ये खबर आई है जिला अधिकारी महोदय मुरादाबाद डॉक्टर राजेंद्र पेंशा जी द्वारा। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मुरादाबाद जनपद में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ तेज आंधी, तूफान, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। हवा की रफ्तार 80 से 90 किलो प्रति घंटा और कुछ जगहों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मुरादाबाद की जनता से हमारी भी रिक्वेस्ट है, अपील है, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, पेड़ों और बिजली के खंभों और होर्डिंग्स से दूरी बनाए रखें, मोबाइल फोन चार्ज रखें, टॉर्च अपने पास रखें, बारिश या बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान और छतों पर जाने से बचें। किसी भी आपात स्थिति में सचित ऐप डाउनलोड करिए, आपदा से खुद भी बचिए औरों को भी बचाइए। सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। ये जानकारी जिला प्रशासन मुरादाबाद द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, एक खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
1: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
2: हाँ हाँ,
1: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
2: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
1: जी,
2: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
1: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
1: जिसका
3: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
1: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
3: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
1: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
3: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
1: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है? आप
3: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता
1: है। करेक्ट करेक्ट।
3: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो

0: सबसे बड़ी चीज ही एजुकेशन सीरीज मैं मानता हूँ इसको,
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पे हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी पढ़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
1: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं, बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर।
0: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने, और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं, और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है। शायद अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
0: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ तो नोबडी इज परफेक्ट,
1: आई थिंक।
0: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
1: क्या बात है,
0: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
1: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है,
0: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
1: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह क्या बात है, लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो आगे बढ़ते हो तो वो और मजा आता है।
0: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, है ना, तो उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
1: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं में चल रही है,
0: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है, गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
2: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड एलिगेशन,
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
2: लिटिगेशन,
1: ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
0: देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
1: ओके,
0: ठीक है, जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
1: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का यू नो जिक्र होता है?
0: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
1: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर,
0: PIL,
1: PIL का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
1: लिटिगेशन के बारे में बात।
0: देखिए जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
1: ठीक है,
0: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
1: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
0: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
1: करेक्ट,
0: उसको बैठ के
1: समझौता किया जाए, बेसिकली
0: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाव पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
1: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
0: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है, तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
1: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली. वेल बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
2: जी. हाँ हाँ बिल्कुल.
1: यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में और ये किस तरीके से वर्क करता है.
0: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है.
1: हाँ ठीक है,
0: सुनी होगी ना.
1: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल.
0: तो PIL क्या होता है, एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, पब्लिक जनहित,
1: करेक्ट
0: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका.
1: राइट,
0: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
1: ठीक है,
0: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है. ये किन मामलों में दाखिल कर की है वो बता देता हूँ मैं. जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं. या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है,
1: ओके,
0: ठीक है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग खराब होते हैं, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं. लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए,
1: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो पब्लिक की हित की बात,
0: पब्लिक की बात होनी चाहिए,
1: करेक्ट.
0: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
1: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
0: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या है, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
1: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
0: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
1: पब्लिक के लिए,
0: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
1: राइट,
0: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की, ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं.
1: बेसिकली मॉडल का पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें
0: चल रही है, बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार, कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके.
1: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर. पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है. बेसिकली
0: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही,
1: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
0: पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है. पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है, तो उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं. इंडिविजुअल के तौर पर नहीं कर सकते, अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पर कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशन.
2: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है.
0: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे, कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में, सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह, पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
1: ठीक है,
0: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको. आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है, कोई सेल्फ है, तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते. उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशन हैं और जो एप्लीकेशन है, वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं.
1: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं. ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर. सर, अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं.
0: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं,
1: ठीक है,
0: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
1: ठीक है,
0: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए, या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं. यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है, तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं.
2: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है.
0: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेंस्ट आप PIL दाखिल कर सकते हैं. भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हों, कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हों तो उसके खिलाफ भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेटेड पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ पीआईएल की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
0: पर्यावरण संरक्षा सुरक्षा के क्षेत्र कि अगर आप बात करते हैं तो पीआईएल हाँ की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
1: करेक्ट, अरावली। हाँ,
0: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहां पे कर रहे थे। वो उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ पीआईएल डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
1: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ या नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम पीआईएल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे ये है क्या, व्हाट इज दिस पीआरएल, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
0: देखिए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
1: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो हम दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से। ध्यान रखना,
0: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि पीआईएल की फुल फॉर्म।
1: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है। पब्लिक इंटरेस्ट
0: लिटिगेशन,
1: यार पब्लिक सीखने को मिली है।
0: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
1: जी जी सर,
0: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
1: ओके
0: ठीक है,
1: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आप तो गूगल नहीं करना
2: चाहिए, गूगल करके निकाल लेंगे तो मैं।
1: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट।
2: हाँ,
1: हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
2: हाँ तो हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पीआईएल के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
0: यस बिल्कुल कराई जा सकती है, अगर जनहित याचिका पीएल के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
2: क्या बात
1: okay.
2: है
1: so, अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पीआईएल कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा।
0: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो पीआईएल का महत्व और ज्यादा की बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
1: एब्सोल्युटली 100%।
0: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर पीआईएल नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्व पूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी पीआईएल के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और पीआईएल भी दाखिल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी करें, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है। तो इसको लेके भी कई पीआईएल जो है दाखिल करी थी, और पीआईएल दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
1: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में पीआईएल से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
0: देखिए, हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे, जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक पीआईएल आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता से।
1: ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
0: भाई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
1: करेक्ट करेक्ट, वही ना,
0: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
1: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
0: हाँ,
1: इस पर हम बात कर रहे हैं अभी,
0: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ पीआईएल डेफिनेटली
1: रहती
0: है, ठीक है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
0: देखिए, हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो उसको लेके जो है कई एक एनजीओज हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, एनजीओ एडवोकेट्स है, वो लोग अपनी पीआईएल या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लेके अगर पीआईएल दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और पीआईएल के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
1: ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और ये जो आपका पीआईएल का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में। एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर, जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
0: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी एफएम मुरादाबाद 89.6 है,
1: जी जी,
0: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
1: भी अपने ऐड कीजिए,
0: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
1: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस, बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है, जो आसपास के लोग हैं।
0: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा,
1: जी सर,
0: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है,
1: हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
0: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पब्लिक की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
1: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है पब्लिक की आवाज, और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए हम आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
2: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है, जिसके बारे में पता भी
1: नहीं। मैं आपको जेनरली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा। आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग, मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
2: इनकी स्टडी के बारे में बात बात करेंगे, मतलब इन्होंने
1: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था। तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप आए एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता भी।
2: पोटला ठोकला नहीं है गाइस,
1: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना।
2: देखो हम घर पर भी बना सकते हैं,
1: वो मुझे नहीं पता। फिलहाल ये लीगल टॉक से यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इट्स नॉट रेसिपी शो।
2: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं, श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रोक मचाते रहिए
1: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए। और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।
3: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
7: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
8: धन्यवाद रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
7: सर ये बताइए आप, मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
8: जी,
7: तो आपको हमारे रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
8: नहीं मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
7: अरे अरे क्या बात है।
8: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने।
7: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर,
8: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए, और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
7: बिल्कुल सर, तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
8: देखिए बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
7: बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
8: देखिए जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थायी रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
7: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
8: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
7: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
8: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
7: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
8: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है उस पर कुछ नहीं कर सकते।
7: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
8: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना आपको मानना भी है और बाध्यता है आपकी।
7: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
8: नहीं, देखिए, इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
7: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
8: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
7: बिल्कुल, बिल्कुल
8: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
7: बिल्कुल,
8: तो कोर्ट
7: बिल्कुल
8: के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
7: बिल्कुल,
8: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
7: बिल्कुल,
8: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
7: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
8: हाँ बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
7: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
8: जी हाँ बिल्कुल, हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
7: क्या बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
8: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
7: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
8: बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
7: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
8: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
7: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता ही
8: जी
7: जाएगा।
8: बिल्कुल बिल्कुल।
7: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
8: बहुत बहुत।
9: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
10: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त आरजे खुशी, और मैं हाजिर हूं आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम लेकर, जी हां फेवरेट शो लेकर, सोच बदलो। और साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन शायद हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। खुश दिखना और सच में खुश होना दोनों अलग हैं। और मेरे साथ में यहाँ पर कुमकुम भी है। और बताइए कुमकुम, कैसी हैं आप? आज बहुत दिनों के बाद आप स्टूडियो आई हैं।
11: जी हाँ, मैं बहुत दिन बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं घूमने गई थी अपनी मम्मा के घर। बहुत टाइम से उनकी याद आ रही थी तो सोचे थोड़ा घूम के आ जाए। मौसम भी काफी गर्म था और अब थोड़ा ठंडा हो गया, तो क्यों ना काम कर लिया जाए वापस।
10: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कहा आपने। कुमकुम, आज का हमारा टॉपिक है खुश दिखना और सच में खुश होना अलग अलग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर?
11: जी हाँ, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि जो लोग होते हैं दिल से खुश होते हैं तो उनके चेहरे पे निखार आ जाता है, लेकिन जो लोगों को दिखाने के लिए खुश होते हैं उनके चेहरे पे एक बनावटी मुस्कान होती है। आज लोग मुस्कुराते बहुत हैं लेकिन अंदर से परेशान भी बहुत होते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे हैप्पी फोटोज तो होंगी लेकिन रियल लाइफ में स्ट्रेस, लोनलीनेस और प्रेशर। क्या हम सच में खुश हैं या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं?
10: कुमकुम, ये तो आप सही कह रहे हो कि आजकल लोग खुश तो हैं और खुश नहीं भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइफ में बहुत सारा तूफान होता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, स्ट्रेस भी होता है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम फेक स्माइल कर देते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। आज लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगे हैं, पता है कुमकुम?
11: जी, मैं ठीक हूँ बोलना आसान होता है लेकिन दिल की बात कहना बहुत ही मुश्किल। डिस्कशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी का प्रेशर होता है, स्माइल बिहाइंड पेन, लोनलीनेस, इमोशनल लाइंस, इमोशनल लोनली, बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं।
10: और पता है आपको कुमकुम, कई लोग इसलिए भी हंसते हैं ताकि कोई उनका दर्द समझ ना पाए। क्या लोग आज अपनी फीलिंग्स छिपाने लगे? क्या सोशल मीडिया ने फेक हैप्पीनेस बढ़ा दी है?
11: जी, ये तो काफी सच है। लोगों को दिखाने के लिए तो दिख रहे हैं कि हाँ खुश हैं, पर उनके माइंड में कितनी टेंशन्स चल रही हैं घर को लेके, फैमिली को लेके, पर वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं या वी आर हैप्पी फैमिली या आई एम सो हैप्पी पर्सन या मेरे पास सब कुछ है ऐसा।
10: चेहरे की मुस्कान देखकर हाल मत समझ लेना। कई बार लोग टूटकर भी हंसते हैं कि कई बार लोग टूटकर भी हंसते हैं।
11: जी बहुत बढ़िया शायरी, आप तो कमाल कर रहे खुशी जी।
10: थैंक यू सो मच।
11: आपको पता है खुशी जी, आजकल हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, लेकिन सच तो यह है कि कोई पूरी तरह परफेक्ट होता ही नहीं। सच बोलना, सोच बदलो, एक ऐसा हमारी तरफ से मैसेज होता है हमारी प्यारी श्रोताओं के लिए कि उनको लगे कि हाँ जो हम बातें कह रहे हैं वो अपनाएं और सोच बदलें। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है।
10: कुमकुम, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए, क्योंकि हर इंसान के अपने अपने प्रॉब्लम है, अपने अपने टेंशन है, और अगर कोई इंसान लाइफ में आगे ग्रो कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं वो संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं नहीं दिख पा रहे हो,

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बच्चों के
4: वन भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के महार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
4: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
5: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला, इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड

0: अपन मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
1: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
0: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
1: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
0: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नानखटाई। नानखटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंस सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीजें, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नानखटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सीबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
1: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
0: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
1: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
1: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
0: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती है दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी DGP। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
2: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
2: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय

0: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना जुड़े।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सीएमओ के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का सीएमओ बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का सीएमओ बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर जीपी गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
2: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
1: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: के बाद कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशीय आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने के लिए किसानों की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत। शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालर्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं मिली हैं।
3: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
3: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
3: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
2: जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति केवल आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में नहीं बल्कि उसकी समृद्ध सभ्यतागत चेतना और नैतिक मूल्यों में निहित है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम सिंधु कुंभ नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की विरासत का संरक्षण देश निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा तक आसान पहुंच हर बेटी का अधिकार है और ऐसी पहल छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और जनहितकारी परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का निर्माण मजबूत स्थानीय बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी से ही संभव है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पक्षियों के लिए जल पात्र स्थापित किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अंतिम मील कनेक्टिविटी पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने जब बसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम कर रही है।
4: प्राइवेट अपने व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आइए, क्योंकि लगातार सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, मेट्रो पे काम कर रही है। मेट्रो में आज की डेट में 65 लाख लोग रोजाना चल रहे हैं।
2: दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम दक्षिणी जोन के उपायुक्त ने यह जानकारी दी। उपायुक्त की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि एक सहायक इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को इमारत के निरीक्षण में हुई चूक के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी 3 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।
5: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ितों को हर संभव सहायता देने और मामले की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोई भी बिल्डर, अधिकारी या प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं है और नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में भर्ती घायलों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और सभी घायलों को निःशुल्क और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्रीमती गुप्ता के निर्देश पर मेहरौली पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और दक्षिण जिले के जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में इस मामले की एक मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सदुलाजाब और आसपास के इलाकों में जर्जर खतरनाक और अवैध भवनों का तत्काल सर्वे और निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
2: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि कई एजेंसियों का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी सभी जरूरी मेडिकल मदद और तुरंत राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर कैलाश के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना को भ्रष्टाचार का मामला बताया। उन्होंने कहा कि यह इमारत मूल रूप से 3 मंजिला थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में आज सड़क नंबर 320 के निर्धारित राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। एक रिपोर्ट।
6: मध्य उत्तर जिला के जिलाधिकारी SS परिहार ने बताया कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि अधिग्रहित सरकारी भूमि है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में सार्वजनिक सड़क के रूप में चिन्हित है। उन्होंने कहा कि सड़क की वर्तमान चौड़ाई अतिक्रमण के कारण प्रभावित है, जिससे नियमित यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और एम्बुलेंस अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण के पूरे होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, आपातकालीन सेवाओं के सुगम आवाजाही तथा क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आकर्षिता सिंह।
7: दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। श्री शुक्ला ने बताया कि ये सीमा पार बैठे अपराधियों के निर्देश पर काम कर रहे थे और इन्हें दिल्ली और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत। शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
9: ओह लवली, वेल डन।
10: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
11: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
12: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
13: नो लोन, लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
0: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त RJ खुशी। दोस्तों, मौसम ने आज फिर से करवट ली है, बादल छाए हैं, हवाओं में ठंडक है और दिल में प्यारी यादें जाग रही हैं। कुछ लोग चाय के साथ पकौड़े एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग किसी की DP देख कर इमोशनल हो रहे हैं। दोस्तों, मैं अकेली नहीं हूँ इस सुहाने से मौसम में, मेरे साथ अखिल जी भी हैं। हेलो, हाय अखिल जी, नमस्कार, आपका स्वागत है।
10: हेलो खुशी जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं, और समोसे भी लेकर आए हैं आज, तो क्या बात है।
10: हाँ यार, बारिश में ना समोसे का तो मजा ही अलग है, और बारिश का सीजन ये जो है बिल्कुल अजीब होता है खुशी। सिंगल लोग जो बोलते हैं कि कितना सुहाना मौसम है, और कमिटेड लोग बोलते हैं बेबी अम्ब्रेला ले आना, मुझे लेके जाना है।
0: अरे वाह, हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी चटपटी बातें सुनने के लिए आपको बने रहना है, चिपके रहना है ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। अभी मिलते हैं हम आपको एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: दोस्तों स्वागत है आपका वापस मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। मैं हूं आपका दोस्त अखिल। शुरुआत करते हैं एक शायरी से जो आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा।
1: इरशाद इरशाद।
0: बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं,
1: वाह वाह वाह,
0: दिल की पुरानी यादें फिर से मचलती हैं।
1: ओहो हो।
0: कुछ लोग चाय में सुकून ढूंढ लेते हैं और कुछ किसी के मैसेज का इंतजार करते हैं।
1: क्या बात है जनाब। वैसे मैसेज की अगर आपने बात कही है तो बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं, लिसनर हैं, इस समय वो भी अपने फोन को टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, किसी के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लो, हम हैं ना आपके साथ। आप बस प्यारी सी स्माइल करो और समझो कि हम आपके पास ही हैं।
0: अभी संध्या जी का मैसेज आया है खुशी।
1: अच्छा
0: संध्या जी है लाइन पार से ही
1: जी।
0: कहती है स्कूल की छुट्टी, गली का क्रिकेट मैच और कागज की कश्ती, हम तो ये बनाते हैं बारिश में। और क्रिकेट मैच मतलब सही है यार, मतलब आजकल जो है ना सभी में, मतलब अपने चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्रिकेट मैच की दीवानगी एक अलग ही चलती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे कागज की नाव मैंने भी बनाई है।
0: अच्छा।
1: हाँ जी।
0: तो तुम्हारी कहाँ तक चलती थी नाव?
1: काफी दूर तक जाती थी, फिर वो डूब जाती थी।
0: गली तो पार कर जाती थी? नहीं,
1: हाँ गली को क्रॉस कर देती थी।
0: बचपन में बारिश देख के हम बाहर भागते थे और आज बारिश देखकर हम कपड़े अंदर उतारने भागते हैं। चलते भैया जल्दी भागो, कहीं कपड़े जो हैं तुम्हारे
1: भीग ना जाए।
0: भीग ना जाए।
1: हाँ अखिल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जब हम छोटे थे बचपन में तो जैसे ही बारिश आती थी हम तुरंत कोई ना कोई बहाना घर से बनाकर नहाने के लिए भाग जाते थे बच्चे। और अब बड़े हो गए हैं तो अब यही ध्यान रहता है, अचानक से याद आता है, अच्छा मैंने तो आज कपड़े धोकर फैलाए थे। फटाक से जाते हैं फिर उतार कर लाते, कहीं भीग ना जाए, इतनी मेहनत तो लगती है कपड़े धोने में।
0: बचपन में जब मैं 4th-5th क्लास में था,
1: हाँ जी,
0: तब मुझे याद है कि माँ कहती थी जब भी ऐसी बारिश होती थी कि मत भीगना बेटा, तुम मत भीगना, अभी बाहर मत निकलना। और शायद ही 5-6 मिनट के बाद माँ की आवाज आ रही होती थी, वो मुझे देखती थी। मैं कॉलोनी में, क्योंकि पानी ऐसा भर जाता था थोड़ा सा ऊपर नीचे, और सामने खाली प्लॉट था तो उसमें क्रिकेट मैच खेलते थे
1: जी।
0: तो वहाँ गड्ढे में कूदे बह रहे हैं हम सबके साथ सारे बच्चे, कॉलोनी के 3-4 बच्चे शैतान अपने। तो वो अलग ही मजा था उस समय बारिश का।
1: हाँ बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं। अभी भी बारिश आती है, वो बचपन तो नहीं है लेकिन वो यादें फिर से ताजा हो जाती है।
0: मगर गड्ढे वही हैं अभी भी।
1: अच्छा गड्ढे वही हैं। तो चलो दोस्तों ये मटर गश्ती हमारी चलती रहेगी ऐसे ही। आप बस ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और कुछ खूबसूरत गीतों के बाद लौट कर आते हैं हम। रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है अखिल सर, आज तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ, और कहाँ डूबे डूबे से हैं आप?
1: एक तो ये गाना इतना अच्छा है खुशी, और मुझे एक बात पे हंसी आ रही थी कि बचपन में ना,
0: हाँ,
1: कागज की कश्ती थी, बारिश का पानी था,
0: हाँ,
1: ना टेंशन EMI की थी, ना रिचार्ज करवाना था।
0: वाह वाह वाह वाह, सुपर, ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने।
1: वो एक अलग ही मजे थे, और उस समय तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है। ना कागज की कश्ती मिलती है कहीं, बारिश का पानी कभी भी आ जाता है,
0: हाँ,
1: EMI की टेंशन
0: खत्म नहीं होती है,
1: और चार्ज कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता, एकदम मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है कि अब आप अपना फटाफट नया रिचार्ज करवा लीजिए।
0: हाँ, और अब तो ऐसा भी हो गया है, अगर हम रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो कॉलिंग भी बंद हो जाता है ना, कॉल आ सकता है ना ही कर सकते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो।
1: खुशी, बॉलीवुड ने ना हमें सिखा दिया है कि प्यार और बारिश का कनेक्शन बहुत ही पुराना है।
0: अच्छा,
1: फिल्म में हीरो हीरोइन बारिश में डांस करते हैं,
0: हाँ,
1: और असल जिंदगी में हीरो स्कूटर साइड में लगाकर इंजन बचाता है।
0: हाँ, ये तो आपने सही बोला है। अच्छा, फिल्मों में मैंने देखा है, मुझे भी याद आया, एक फिल्म थी जिसमें माधुरी जी और शाहरुख खान जी थे, और आपको याद है वो फिल्म?
1: शाहरुख खान जी और
0: कोई लड़की है,
1: अच्छा,
0: जब वो घसती है
1: बारिश होती है, छमा छमा छम छम।
0: तो दोस्तों, ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में जब कोई लड़की होती है और वो हंसती है और बारिश होती है?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं होता है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको क्या पता ये इंसिडेंट आपके सामने हो जाए तो कैसा लगेगा?
0: कुछ भी हो सकता है,
1: कुछ भी हो सकता है, बारिश में तो कुछ भी हो सकता है,
0: बारिश में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज छाता जरूर लेके जाए, रेनकोट भी पहने, एंड अगर बारिश नहीं है तो उसको साथ रखें, क्योंकि अपने फुल तैयारी से रहना चाहिए।
1: और बारिश में किसी के साथ चाय पीना ना, और दिल की बातें करना, उसकी जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। जब बैठ जाओ चाय की टपरी पे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्या कहते हैं, हम सफर के साथ, या अपने और भी जो होते हैं ना फैमिली मेंबर्स, या आपके कजन जैसे हो गए ना, मामा का लड़का और फूफा का लड़का, एकदम एकदम कांटे वाली जोड़ी होती है दोनों,
0: हाँ,
1: तो एकदम बैठ जाते हैं। और
0: अच्छा, आप ये बारिश की बातें कर रहे हैं तो मेरे जहन में आया है, क्यों ना आपसे मैं बारिश की कुछ यादों के बारे में जान लेती हूँ। आपकी बारिश की कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज जो आपको आज भी याद है?
1: बारिश की मेरी ब्यूटीफुल मेमोरी ऐसी है कि मतलब कह भी सकते हैं ब्यूटीफुल, थोड़ी सी, मैं नया नया अम्ब्रेला लेके आया था, और मतलब कहते हैं ना चांस, जैसी मैंने अम्ब्रेला खरीदा उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश चालू हो गई थी
0: जी।
1: अच्छा, PAC पे मैंने शॉप पे PAC के पास ही अपने मुरादाबाद में, वहाँ पे अम्ब्रेला खरीदा था
0: जी।
1: और PAC से मेरे को जाना था अंदर दीनदयाल नगर तक,
0: ओके।
1: तो जब वो बारिश चालू हुई, वो नया नया अम्ब्रेला था, तो एक डर ये था कि कहीं मम्मी ना डांट दे तुमने जो है अभी खोला, और अभी उस समय बारिश भी ऐसी हो रही थी जब हाथ में अगर छाता नहीं खोले तो कहेगा यार तूने छाता क्यों ले रखा
0: है। हाँ, छाता तो, भी है और बारिश में भीग भी रहा है।
1: तो मैंने हिम्मत करके एकदम वो अम्ब्रेला खोला।
0: हाँ।
1: अब मजे की बात क्या थी कि थोड़ी सी आगे चला, हवा भी तेज चल रही थी, भाई वो अम्ब्रेला बिल्कुल उल्टा हो गया। मैंने को ऊपर देखा तो तानी तानी दिख रही थी, वो पूरा उल्टा हो गया अम्ब्रेला। मैंने कहा बेटा आज तो गया, अभी तो तूने छाता खरीदा, अभी तेरे साथ ही हवा भी चल गई और तू छाते को संभालेगा, क्या संभालेगा घर, और घर में ये टेंशन नहीं कि मैं भीग जाऊंगा,
0: हाँ,
1: या मैं भीग रहा हूँ, ये टेंशन अब जाके भी डांट जुड़ी छाता, तू उल्लू बना रहा था, तूने छाता नहीं लिया, किसी का सेकंड हैंड छाता लिया। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से करके उसे हवा जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में किया, और अपने सामने ऊपर की सामने की तरफ करके।
0: अखिल सर, आपको पता है उस सिचुएशन में ना छाता बंद भी नहीं होता है, हम कोशिश भी बहुत करते हैं, कई बार तो छाता भी उड़ जाता है इंसान के हाथों से।
1: और जो भी आसपास से निकल रहा था वो ये कह रहा था अरे संभाल के। मैंने कहा भाई तुझे क्या बताऊं, मैं खुद क्या संभालूं।
0: मतलब दोस्तों की बहुत सारे हमारे जो श्रोता इस समय सुन रहे हैं ना अखिल सर, वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि साथ भी ऐसा हुआ है, ये मोमेंट हुआ है, तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि
1: अगर आपने छाता लिया है और हवा में वो छाता नहीं उल्टा हुआ है तो इसका मतलब आपका छाता लेना बेकार है।
0: तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ और बातें हम आपसे करेंगे, अभी लौट कर आते हैं, तब तक आप सुनिएगा कुछ शानदार गीत आपके अपने प्यारे से रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए,
0: और अखिल सर की तरह मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजी खुशी स्वागत करती है और मेरे साथ में अखिल जी भी हैं जो यहाँ पर शानदार बातें कर रहे हैं। साथियों, कभी कभी बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं होती, ये दिल के अंदर चल रहे जज्बातों का भी एक नाम होती है। जो लोग किसी को याद कर रहे हैं, ये सेगमेंट उनके नाम है। कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, आते हैं और दिल को भिगा जाते हैं। कुछ यादें मीठी सी खुशबू की तरह, कुछ यादें मिट्टी की खुशबू की तरह उम्र भर साथ रह जाती हैं।
1: क्या बात कही है, क्या बात कही खुशी जी आपने, बिल्कुल मजेदार।
0: अच्छा अखिल सर, रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस लाइन क्या होती है?
1: मुझे लग रहा है खुशी तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम चाहती हो कि आज जो है ना अखिल का जो बैंड बज जाए। मतलब रिलेशनशिप में डेंजरस लाइन, सारी लाइन ही डेंजरस होती है।
0: सबसे डेंजरस लाइन क्या होती है? कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं,
0: उसके पीछे का राज तो बहुत कुछ होता है।
1: उस कुछ नहीं के अंदर ना एक पूरा सिलेबस छुपा हुआ होता है। अभी तो पता नहीं ना वो सिलेबस क्या क्या है, वैसे पता चल जाएगा तुम्हें सिलेबस में क्या क्या होता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर बारिश बहुत तेज है तो जो ऊपर है ना उनको स्पीड वाली उस पे ले लेना, प्रोसेस पे थोड़ा तेज। जितना ज्यादा क्लियर विजन होगा ना उतनी जल्दी यार पहुंचोगे।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और कभी कभी होते हैं ना धीमी धीमी बारिश होती है, स्लोली गाड़ी चलती है और लाइट म्यूजिक होता है, कैसा लगता है वो सफर?
1: वो बहुत मतलब अच्छा सफर है। और अपना क्या है ना, सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी क्या होती है कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं, सब कुछ हर चीज आपके साथ चल रही, मगर आपके दिमाग में ना एक हल्का सा सुकून सा माहौल होता है। कुछ बातें कुछ यादें आपको वो रियलाइज, मतलब ड्राइव भी कर रहे हैं, मौसम जब इतना अच्छा हो जाता है ना तो लगता है कि कुछ चीजें आपको याद आती हैं और आप उनको मतलब रियलाइज करके उन्हें मुस्कुराते हैं उन चीजों पे। वरना फिर बगल में जो बैठा हुआ पार्टनर कहता है यार मुझसे बात करने का तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तुम, तो ये भी एक टाइम है। हाँ। जब बगल वाले पार्टनर के साथ आप बातें कर सकते हैं, उससे कुछ उसकी भी बातें सुन सकते हैं, कुछ अपनी बातें भी उससे बोल सकते हैं।
0: जैसे हम दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और कुछ आपके साथ भी साझा कर रहे हैं कि अखिल ने, मैंने अखिल सर से मालूम किया कि आप मुझे बताइए कोई ऐसी डेंजरस लाइन रिलेशनशिप की, तो उन्होंने मुझे कुछ बातों में ही बहला दिया, प्रॉपर नहीं बताया क्योंकि उनको भी पता है कि घर जाकर अगर मैंने कुछ बोला तो पर्दा फास्ट हो जाएगा। तो आज कुछ बोलूं ना ही उसमें फायदा है।
1: खुशी, संगीता जी का मैसेज आया है।
0: अच्छा संगीता जी, नमस्कार आपको भी।
1: संगीता जी ने लाजपत नगर से हैं, कहती मैं एक कुछ उन्होंने लिखा है, पढ़ता हूँ जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बारिश का मौसम हो और किसी अपने का साथ हो,
0: वाह वाह क्या बात,
1: जिंदगी की हर मुश्किल उस पल में आसान हो। क्या बात है संगीता जी ने, बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा लिखा है।
0: ये बहुत खूबसूरत इन्होंने लाइनें लिखी, जिंदगी की जो मुश्किलें हैं ना वो आसान हो जाती हैं जब अपना हम सफर अपने साथ होता है।
1: चलिए बाकी ये गाने का ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ दोस्तों, और लौट कर आएंगे कुछ और बातों के साथ, कुछ नई शायरियों के साथ। अखिल सर आज पूरे शायराना अंदाज में यहाँ पर विराजमान है, बैठे हुए हैं।
1: ये तो शायराना अंदाज हमारे साथियों का है जो हमें मैसेज कर रहे हैं, इतने अच्छे मैसेज किए। अगर आपके पास भी कोई मैसेज है ऐसा जो आप कहना चाहते हैं तो आप हमें जरूर उसे मैसेज करें 9837896 और 896 पर।
0: आपकी शायरियाँ सुनकर ना मुझे अखिल सर एक गाना याद आ रहा है,

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं

0: स्वागत है आप सभी का वापस मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। एक शायरी है जो मैं बोलना चाहूँगा। तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी खुशियाँ मेरी जान बन गई, कुछ इस तरह समा गए हो तुम दिल में कि हर धड़कन तेरा नाम बन गई।
1: वाह वाह, क्या बात है अखिल सर, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आपकी। और ये शायरी सच में मतलब दिल को छू गई है। और प्यार इतनी खूबसूरत चीज होती है ना कि उसमें इंसान खुद को भूलकर सामने वाले की खुशियाँ ढूंढने लगता है।
0: ये बात तो सही कही आपने खुशी जी।
1: मैं भी कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ।
0: इरशाद इरशाद।
1: कि चांद से हसीन चेहरा है तुम्हारा, चांद से हसीन चेहरा है तुम्हारा, फूलों से प्यारा है साथ तुम्हारा, दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर दूं, दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर दूं, अगर मिल जाए उम्र भर साथ तुम्हारा।
0: क्या बात खुशी जी, क्या बात, लगता है कुछ है मामला।
1: ये मामला बिल्कुल है। ये ना हमारे साथियों से और हमारे प्यारे से रेडियो से हमारा ये रिश्ता है और हम बस यही चाहते हैं कि उम्र भर ये साथ निभाए हम सब मिलकर।
0: बिल्कुल सही बात कही। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई खास है तो उसके लिए प्यारा सा मैसेज करिए हमें, हम बोलेंगे और उसे बताएंगे कि सच में आप उसके लिए कितने खास हो।
1: अच्छा अखिल सर, कभी कभी प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि सामने वाला कुछ कहे बिना भी सब कुछ समझ जाता है।
0: हाँ, ये तो है, ये तो एक मतलब कहते हैं ना साइलेंट फीचर है प्यार का।
1: आप कुछ कहो भी नहीं और आंखों आंखों में सारी बातें हो जाती है।
0: ये बात भी है। देखिए, एक उन्होंने लिखा है विकास जी ने,
1: हाँ,
0: दीनदयाल नगर से
1: जी।
0: ना चांद चाहिए ना सितारों की बारात चाहिए,
1: वाह वाह वाह,
0: बस हर सुबह तेरे नाम की शुरुआत चाहिए।
1: ओए होए,
0: क्या बात, बिल्कुल लगे रहिए, कभी ना कभी बिल्कुल मतलब जो आपने बोला है ना हो जाएगा। सुबह सुबह मैडम आपको कहेंगी अरे उठो जी चाय तो पी लो।
1: सुबह सुबह अगर आप ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली एक दिन वो दिन भी जरूर आएगा जब मैडम आपको बोलेंगी सुनिए जी मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, उठ जाइए और चाय पी लीजिए।
0: सही कह रहे हो।
1: मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब क्या हो गया एकदम अचानक अचानक तुम्हारे अंदर से सारी बातें निकल के आ रही है, कहीं कौन सा शायर आपने छुपा रखा है खुशी जी अपने अंदर?
1: नहीं नहीं नहीं, कोई शायर नहीं है। जब आप इतनी खूबसूरत लाइनें बोल रहे हैं तो मेरे जहन में भी कुछ आ रहा है कि तुम्हारी यादों का मौसम कुछ ऐसा छाया है, तुम्हारी यादों का मौसम कुछ ऐसा छाया है, हर तरफ बस तुम्हारा ही साया है, जब भी बंद करती हूँ आंखें दिल ने सिर्फ तुम्हें ही पाया है।
0: क्या
1: दिल
0: बात
1: ने सिर्फ
0: है?
1: तुम्हें ही पाया
0: क्या
1: है?
0: क्या बात है, मतलब आपने आज ये बोल दिया ना, ऐसा कोई बोल देगा ना अपनी अपने किसी चाहने वाले के आगे तो आज ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाना। सही कह रहा हूँ?
1: हाँ बिल्कुल, आपकी बातें गलत थोड़ी ना होती, आप जो भी कहते हैं बहुत ही अच्छा बोलते हैं।
0: तो चलिए अब अपने लिसनर्स को भी हम कुछ अच्छा अच्छा सुनाते हैं इसी इश्क में।
1: हाँ बिल्कुल, सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत गीत यहाँ पर सुनवाते हैं। और दोस्तों, अब हम आपसे जाने की अनुमति भी लेना चाहेंगे क्योंकि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। आई होप आपको ये सेशन, ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हम लेकर आए हैं, आपकी यादों को हमने फिर से ताज़ा किया है, तो आप अपने फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9837896896। रेडियो बजाते रहिए
0: और गुनगुनाते रहिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, फिर मिलेंगे प्यारी बातों के साथ
0: बहुत जल्द इसी समय इसी मौसम के साथ।
1: मौसम बहुत सुहाना है तो कुछ सुहाने गाने भी हो जाएंगे आपके लिए।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
3: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
3: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
3: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
2: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
3: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
4: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के

0: पैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन के आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। और दोस्तों, आज तो मैं भी एक शायर बन के आ गया हूँ। माना कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अंदर की जो बातें हैं ना, जो अंदर की फीलिंग्स है, वो निकल जानी चाहिए और अच्छा होता है यार। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं, जो जनाब हैं, वो भी बस इसी के सरताज बनने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। आज बहुत सारी बातचीत होगी आपके साथ, आपकी शाम को थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ जो है हम ब्यूटीफुल बनाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, वहीं शुरू होती है हमारी महफिल, दिलों की बात दिलों के साथ। आपका अपना रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद, जहां पर आज प्यार, मोहब्बत, इश्क और न जाने कौन कौन सी बातें होने वाली है, लेकिन जो भी बातें होंगी वो सिर्फ आपके काम की होंगी और आपसे रिलेटेड होंगी, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट का डोज भी देंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अभी मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है अब उन्हें नहीं करने देंगे आराम, उनसे बातचीत करना है यार, यही तो हमारा काम है। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में आपका।
6: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आनंद जी।
7: जी हालांकि इनकी आवाज आपने पहले भी सुनी है, लेकिन ये अभी काफी सीरियस होके बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सर मतलब लंच वंच खा पी के आए हो ना आप स्टूडियो में हमारे?
6: नहीं नहीं बिल्कुल सही है, जरा एक शुरुआत होती है तो उससे फिर आगे बढ़ना होता है, तो वही मैं उस इंजन को स्टार्ट करने के।
7: बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप इंजन स्टार्ट कीजिए, हमने तो पूरी गाड़ी स्टार्ट कर दी है सर। वेल आगे बढ़ते हैं सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए जरा आपने आपको।
6: जी मेरा परिचय क्या है कि मैं आप ही के बीच का हूँ।
7: बिल्कुल सर।
6: मेरा नाम मनोज मनु है
7: जी,
6: और शायरी और कविताओं से मुझे निस्बत है।
7: क्या
6: मैं
7: बात है?
6: अपने परिचय के बारे में चार मिसरे ही क्यों ना रखूं?
7: बिल्कुल इरशाद जनाब, मजा आ जाएगा फिर तो। आए हाय,
6: कहता हूँ कि अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है।
7: अरे वाह।
6: अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है, कौन है कैसा खबर है मुझको, सब होशियारी मुझमें है।
7: क्या बात है।
6: पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझमें है। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझमें है।
7: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। तो मनु जी एक बात, मैं आपको मनु जी बोल सकता हूँ ना सर?
6: क्या बात है मेरा
7: सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी आवाज में बेस इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना बढ़िया आप डिलीवर कर रहे हैं अपना, लेकिन ये जो आपने अभी अपने आप को भी इन शब्दों में पिरो दिया मुरादाबाद, और फिर अपने आप को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये खूबसूरती कहाँ से आती है मुरादाबाद के कलाकारों में? अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ सबका कुछ ना कुछ रहा है मुरादाबाद की चीजों से रिलेटेड, अपने आप को भी उसमें शामिल कर देना, ये मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग जब लिखते हो तो उसके अंदर खुद को फील करते हो?
6: आपने सुना होगा कि अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस की बात नहीं।
7: एग्जैक्टली,
6: तो ये बस प्रभु का आशीर्वाद है।
7: क्या बात है,
6: जिसने जो शब्द अता किए हैं उनके माध्यम से जो जहन में आता जाता है, उतरता जाता है, वही कहा जाता है। कहते हैं ना कि शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है, पढ़ा जाता है,
7: पढ़ा जाता है, फील किया जाता है।
6: जी जी, तो बस वही जो वो दे देता है वही हम ले लेते हैं।
7: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर, और ऐसी खूबसूरत बातें जो है आज सुनते रहेंगे आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आपकी शाम को खूबसूरत बना रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज वर्मा मनु जी, और आज आपकी शाम को स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो अपनी डायरी में चिट्ठा लेकर आए हैं, पूरा एकदम भारी भरकम तैयारी के साथ आए हैं। तो सर शुरुआत कैसे होने वाली है, क्या है जो आप हमारे श्रोताओं को आज की शाम सुनाएंगे? लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, मैं मतलब बता दूं आपको गाइज, जैसे मनु जी हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने बोला कि आनंद जी अपनी रफ्तार थोड़ी कम रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ऐसे में कौन सी एक्सप्रेस में सवार होता हूं जो सर ने मेरे को ये पहले से अलर्ट भेज दिया। ऐसा क्यों बोला सर आपने? माना कि आपका फ्लो वो अपना शायर वाला चलेगा, बट मेरा तो वो जॉकी वाला ही रहेगा ना सर?
6: जी, एक शेर कहा जाता है,
7: हर बात
6: वो बर्क रो था,
7: हाँ
6: वो बर्क रो था,
7: हाँ,
6: कहाँ रह गया जाने पीछे,
7: हाँ,
6: अब इंतजार करेंगे शकिस्तापा उसका।
7: हाँ, अरे वाह,
6: शकिस्तापा यानी कि जो धीरे धीरे कदमों से चलने वाले हैं,
7: हाँ, हाँ,
6: वो इंतजार करते रह जाते हैं।
7: ओके।
6: तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोफेशन है और आप जुड़े हुए हैं, शहर मुरादाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत जो उसकी स्पीड है आपकी, वो स्पीड काबिले तारीफ है, लेकिन ये जो शायरी है,
7: हाँ,
6: ये हसास का विषय है,
7: इसमें ठहराव चाहिए,
6: एहसासों का विषय है,
7: और इसमें
6: ठहराव की बहुत जरूरत है, बस इसीलिए मैंने आपसे दर्ज की थी।
7: नहीं तो मैंने वो पब्लिकली रख दी ना सर, देखिए इतनी अच्छी बात है, ताकि वो चीज हमें पता तो चले और हमारी ऑडियंस को भी पता चले।
6: नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, जब हम पब्लिक के सामने होते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के लिए होता है,
7: क्या ही होता है, और उसी के लिए होता है।
6: बेशक इसमें कोई जरा सा भी गुंजाइश नहीं कहने की, मुरादाबाद की और आपके एफएम की जो जनता है, जो श्रोता है, वो निहायत खास हैं, कोई आम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं रेडियो एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।
7: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बोला, और आप भी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है आरजे बन जाएंगे आप भी अगर ऐसी प्रैक्टिस चलती रही तो। खैर आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मनु जी आपसे बातचीत करके, और वैसे तो कई मरतबा मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है आते जाते, रोड के किनारे, सड़क के किनारे हम लोग गुफ्तगू करने लग जाते हैं जब भी मिलते हैं, लेकिन आज जो ये इंट्रैक्शन हो रहा है ना सर, मेरा आपका पहली बार हो रहा है शायद ये कॉन्वर्सेशन ना?
6: जी जी, ये पहली बार ही है जो मैं हिम्मत समेट के आपके सामने हूँ।
7: अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हमेशा इतना अच्छा करते हैं, मैं इवन आपके स्टेटस भी देखता रहता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो जब भी कोई ओकेजन होता है सर का हम देखते रहते हैं, मान सम्मान और आपकी जो चीजें आप करते हैं मतलब बढ़िया है। और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास कलाकारी है, अगर वो पहचान के उसमें कुछ अच्छा करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
6: सही कहा आनंद जी, ये बिल्कुल आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे इतनी आपने सम्मान प्रदान किया है। मैं फिर अपनी दो लाइनें रहूं?
7: जरूर सर,
6: यही शेर में दो लाइनें दो मिसरे होते हैं जो आपके साथ साथ हमारे जो सामाइन जो श्रोतागण हैं
7: जी जी
6: उनके लिए भी है कि मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं।
7: वाह।
6: मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं, उसकी बख्शी हुई नेमत है मेरा कुछ भी नहीं। और चंद मिसरों को जो तरजीह अता करता है, ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ भी नहीं।
7: क्या बात है,
6: ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ
7: गजब
6: भी नहीं।
7: जी गजब। मुझे लग रहा है कि दोस्तों कल सुबह अगर मैंने उर्दू के कुछ भी शब्द नए बोले तो उसमें सारा योगदान मनु जी का होगा। आज पूरी उर्दू सिखा के जाने वाले, मतलब क्या इनके शब्द है, मतलब तलफ्फुज देख रहे हैं आप इनका कितना गजब का है सर। मतलब
6: शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया,
7: मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए सर।
6: ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए,
7: एब्सोल्युटली सर आप डिजर्व करते हैं। और गाइस हम जो है आपकी शाम को ऐसे ही रॉकिंग बनाते रहेंगे, काम करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो सर से कुछ बेहतरीन सा सुनेंगे जो आपकी शाम को और भी बेहतर से बेहतरीन बना देगा। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा जी आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज मैं भी थोड़ा उर्दू में, थोड़ा शायराना अंदाज में मैं भी कुछ ना कुछ कहता रहूंगा। जब इतने खास लोग सामने बैठे हों शानदार प्रस्तुति के साथ तो फिर वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो मनु जी वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में, और मैं चाहूंगा कि कुछ बढ़िया से अपने अल्फाजों में कुछ बढ़िया से हमारे लिसनर्स को सुना दें आप।
1: शुक्रिया आनंद जी, मैं फिर रखता हूँ दो मिसरे
0: जी।
1: तमाशा बन के रह जाए मरासिम,
0: वाह,
1: मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना। तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे भी कुछ लिखते हैं सर, या यहीं पे ये लाइन जो है एंड हो जाती है?
1: जी लाइनें तो हैं, लेकिन जो मौजू है वही चीज सामने आती है।
0: क्या बात है, लेकिन सर एक बात तो है कि कहीं ना कहीं जो प्यार करने का तरीका होता है, जब आप शेर व शायरी के साथ आते हो तो उसका मजा डबल हो जाता है। आप लोगों तक वो बात पहुंचा देते हो जो एक्चुअली आप जानते हो, और जो सुन रहा होता है ना, जो उसको फील करता है तो वो समझ पाता है, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना वो दिल से दिल तक का होता है। और ये बात जो आप अपने अल्फाज के थ्रू कह रहे हैं हमारे लिसनर्स से, जो अपनी शायरियों के थ्रू रख रहे हैं, ये ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे जो दिल से इस चीज को फील करते हो या इस चीज से जुड़े हो कहीं ना कहीं।
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि शायरी का जो अपना मकाम है, जो उसकी सफलता है
0: जी जी,
1: वो भी यही है कि जो मन कह रहा है वो मन सुने सामने वाला।
0: वही बिल्कुल सही कहा,
1: कनेक्ट करता है, तो ये शायरी वास्तव में अपनी सार्थकता महसूस कराती है।
0: गॉट इट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आजकल के प्यार के बारे में कुछ है आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग? आजकल का जो सोशल मीडिया वाला जमाना है, सोशल मीडिया वाला प्यार है, जहां एक घंटे के अंदर प्यार हो जाता है, वहीं दूसरे घंटे में लोग ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर कोई नया मिल जाता है, तो इस आजकल का जो जमाना चल रहा है, अगर उसकी बात करूं तो उस पर कुछ अगर आप रखना चाहें।
1: देखिए, चीज तो होती है, दरअसल क्या है, बाकी की चीजें मौका ही नहीं देती। जिंदगी इतनी तेज भाग रही है मौजूदा हालात में
0: 100%
1: कि उसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, रोक नहीं सकते। जहां रुकते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आप इस बारे में ये नहीं कह सकते कि जो कली, जो जो जो एक पौधा, उसके जो बीज मोहब्बत का उस दिल में फूटा था, वो दबके रह गया। हो सकता है वो खत्म हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। उनके लिए मैं दो लाइनें बताता हूँ आपको।
0: Please, sure.
1: ये किसी शय का किसी तौर भी बदल न हुई, ये किसी शय का किसी तौर भी बदल न हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल न हुई।
0: क्या बात है,
1: ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है
0: जी।
1: तो जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है, बस यही सच्चाई का एक सार्थक गुण है। ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई। हमने माना कि तेरा साथ नहीं किस्मत में, मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुकम्मल नहीं होता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि सच्चा इश्क वही होता है जो आपको ना मिले, ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते मैंने सुना है। इवन मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल एकदम सच्चा वाला प्यार करते हैं, एकदम सत्यवान टाइप वाला, बट उनको वो जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं सच्चा प्यार तो वही है जो नसीब ना हो। क्या सच में इसमें इस बात में सच्चाई है? वैसे आप लोग इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं?
1: सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल ये है कि जब तक, जैसे मैं एक आपको फिर वही शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा
0: जी, प्लीज।
1: हमारे एक उस्ताद शायर ने कहा है
0: जी जी,
1: आ तमन्ना तुझको रोलूं वक्त वस्ल।
0: क्या बात,
1: वस्ल यानी कि मिलन का जो समय होता है
0: जी जी।
1: आ तमन्ना तुझको रोलूं वक्त वस्ल, आज तू दिल से निकाली जाएगी। यानी कि जो चीजें पूरी हो जाती हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं। और जैसे हमारे गालिब चचा ने भी कहा है कि वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन जिसमें आज हमारे साथ मनु जी मौजूद हैं। ढेर सारी आपको शेर व शायरी के साथ एक कह सकते हैं फ्लो बना रहे हैं आपका और मेरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी शाम को खूबसूरत बना रहे हैं। नए नए शब्दों से हमें रूबरू करा रहे हैं, ढेर सारी बातें उनके साथ चल भी रही हैं और उनकी अंदर की जो कलाकारी है वो भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से।
1: शुक्रिया। थैंक
0: यू जी। मनु जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, और मतलब पूछना क्या, साफ शब्दों में कहूँ तो सुनना चाह रहा हूँ। शेर व शायरी और ये जो कविताएं हैं जो आप रचनाएं हैं वो तो आप करते ही रहते हैं, इवन आप गीत भी बढ़िया गाते हैं, मैंने आपके सुने हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी आप अच्छा करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ वही नज्म की, क्योंकि शेर व शायरी से हटके कुछ अलग चीज लगती है मुझे नज्म, है ना? तो कुछ अगर आप नज्म पे चर्चा कर लें, कुछ बढ़िया सी सुना दें तो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को डबल मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है। वास्तव में नज्म अपने आप में एक मुकम्मल चीज है।
0: Absolutely.
1: और शायरी में जहाँ गजलें अपने मुख्तलिफ शेर अलग अलग शेरों में अलग अलग बात कहती हुई चली जाती है, वो कहीं भी हो सकती है। नज्म की खासियत यह है कि ये जब उतरती है तो पहले अक्षर से शुरू होकर अपनी बात मुकम्मल करने तक उतरती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक मेरी एक पसंदीदा नज्म है
0: जी,
1: जिसका अनुवाद मैंने हसरत रखा हुआ है।
0: अरे वाह।
1: मैं आपको और दर्शकों के बीच में रखता हूँ।
0: पक्का पक्का, श्योर।
1: हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे।
0: क्या बात है।
1: ये देखिए एहसास किस तरह से पिरोते हैं एक नज्म के साथ, कैसे बहती है एक
0: फ्लो
1: नज्म है, जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है। हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे, कल मुकद्दर में ना हो मैं न रहूं, दिल के जज्बे जुबा से कहने दे। हाँ तेरी आस में जाने कितने, मैंने लम्हों को जिया सदियों सा, फासला तेरे दरमियां मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, फासला तेरे दरमियां मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, कतरा कतरा जो निचोड़ा खुद को, तो यह एहसास बयां कर पाया, देख ले तू जो तेरा जी चाहे, जिंदगी का ये मेरी सरमाया, शर्त वैसे ये नहीं होती, जो तुझे चाहे तू उसे चाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे। मैं जो इस दर्जा चाहता हूँ तुझे, इसके इजहार में हो सकता है, ये जो एहसास है रिफाकत है मेरा, आखिरी आस भी खो सकता है, पर ये उम्मीद के साये भी तो उलझने जीस्त की बढ़ाते हैं, जो महल चुनते हैं रेजा रेजा, और फिर आप ही गिराते हैं, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, मुतमईन हो ले जो भी होना है, दिल के मिटने को या मोहब्बत को, हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे। तो देखा आपने कि ये रवानी
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जो है शब्दों को पिरो रहे थे, और मतलब मैं तो कश्मकश में था कि सर ये मतलब कहाँ क्या क्या फ्लो बना रहे, कहाँ मतलब कहना क्या चाह रहे, और इतनी बढ़िया आपने जो है शुरुआत करी नज्म की, और कहाँ से कहाँ आप ले गए, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, मतलब वो शब्द वाला सीन वही था, मतलब मजा आ गया। मैं पूरी गहराइयों के साथ
1: आनंद जी, होता यही है कि जो नज्म है वो उतरती है उसका जो लुत्फ है वो यही लुत्फ है,
0: कसम से
1: बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिरी मिसरे को जाकर ये मुकम्मल कर दे।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन।
1: मैंने आपके बीच रखी और आपको और श्रोताओं को मुझे यकीन है पसंद
0: आई होगी। बहुत मजेदार लग रही है, और आपके जो शब्द हैं, आपके जो अल्फाज हैं बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। नो डाउट आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। और सर देखिए बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
1: जी प्रोफेशनली मैं ज्वेलर्स परिवार से ताल्लुक रखता हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: और बेसिकली मैं रामपुर जनपद के टांडा का निवासी हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: पिछले 2011 से हम लोग यहाँ पर मुरादाबाद शिफ्ट हुए हैं, ईतल नगरी।
0: अरे वाह।
1: और सही कहूँ तो जो मेरी साहित्यिक शुरुआत, साहित्यिक जन्म हुआ वो 2006 से मुरादाबाद से ही प्रारंभ हुआ। दादा महेश्वर तिवारी जी जैसी अजीम नव गीत की जो हस्ताक्षर,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: उनके बीच उनसे मिलना जो हमारे सौभाग्य की बात थी।
0: अरे वाह
1: जी। कृष्ण कुमार नाथ साहब, आदरणीय योगेंद्र वर्मा व्योम जी, मंसूर उस्मानी साहब, इन सबसे जब मिलना हुआ, इनको सुनना हुआ, तो इनको सुनते सुनते धीरे धीरे वहीं से वो अनवरत यात्रा शुरू हुई है। तो वर्तमान में मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा।
1: और जेंडर्स का तो भी हमारा वर्क है, तो वो चलता रहता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही वर्मा नाम दिमाग में आता है, वो ज्वेलर्स तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, नो डाउट। वेल, खैर कह सकते हैं कि एक अपना घर का,
1: हाँ हाँ,
0: वही वही वही वही, मतलब एक होता है ना कि आप शुरू से आप चलता आ रहा है एक।
1: जी जी, हमारा दादालाई जो कारोबार है वो यही है,
0: वो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसी खूबसूरत बातें और खूबसूरत जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आरजे आनंद के साथ हैं आप।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ और ये स्टेशन है दिल से दिल तक वाला। यस ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आज स्टूडियो की शाम को और भी खूबसूरत और रंगीन बना रहे हैं अपनी बातों के साथ मनु वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में है एंड अभी मैं भी उनके साथ दे रहा हूँ, ढेर सारी बातचीत उनसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप एंजॉय कर रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इतना और कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, कुछ बढ़िया कला है, आप लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा सुना सकते हैं, आप अच्छी शायरी करते हैं, जो भी आप करते हैं व्हाटएवर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा सोशल मीडिया का हैंडल आपको मिलेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, या ऑफिशियली अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो वहां की भी आप डीएम कर सकते हैं अगर आप हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपका टैलेंट है, जो आप हमारे साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो के नंबर पर आप हमें भेजिए ना अपनी एंट्रीज 9837896896 यानी कि 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर पर आप बिना किसी देरी के फटाफट से जो भी आप बढ़िया करते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तो ये सबके लिए खुल चुका है। बिल्कुल आप हमें पहुंचाइए अपना प्यारा सा एक मैसेज अपने टैलेंट के साथ, उसके बाद हम आपसे खुद ही कनेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अभी मनु जी से हमने ढेर सारी शेर व शायरी तो सुन ली है, नज्म हमने सुन ली है, अब बारी है एक ऐसी चीज की जो शेर व शायरी से भी परे है। अच्छा सर, शेर व शायरी से मुझे याद आया, शेर व शायरी से हम प्यार मोहब्बत इश्क हर चीज की बातें करते हैं शेर व शायरी के माध्यम से, लेकिन अगर हमें कोई सामाजिक मैसेज डिलीवर करना हो, हमें कोई सोशल मैसेज देना हो या आम जनता के हित की बात करनी हो, तो क्या ये भी शेर व शायरी और गजलों के माध्यम से हो सकती है क्या?
1: हम गजल के माध्यम से, शेर के माध्यम से क्या नहीं कह सकते,
0: मतलब वही मैं आपसे जानना, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होती है बहुत सारी चीजें,
1: काव्य की यही खूबसूरती है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि मेरा जो कविता में भी
0: जी
1: और गजल में भी मैं दोनों को पसंद करता हूँ।
0: क्या बात,
1: और दोनों का मैं विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरातन समय में जो हम वेदों की बात करते हैं, ऋचाओं की बात करते हैं, जो अनुष्टुप छंद में आपने देखा होगा
0: जी,
1: ये काव्य चीज यही है जो हर तरीके का संदेश देता है।
0: क्या बात,
1: हर तरह का संदेश देता है, और इसमें सारी की सारी जो जानकारियां हैं
0: जी,
1: जो हमारे हित के लिए हैं, जो सामाजिक हित के लिए हो सकती हैं, इवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, राष्ट्र पर, देश पर, विश्व पर, और अपने अंदर के मन पर, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण पर भी,

0: हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हमारी हो गई है, ऐसी कंडीशन में ये रहता है कि एक बच्चा या दो बीबी, इस तरीके की कंडीशन हो गई है, तो एक बच्चा क्या सोचता है, ये संदेश बच्चे के माध्यम से बड़े को पहुंच रहा है।
1: क्या बात है,
0: हम उस चीज को देखें, सोचें, महसूस करें।
1: जी जी।
0: और कोशिश करें कि हम कैसे बदल सकते हैं। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। ये एक बच्चे की तकलीफ है जो रचना प्रस्तुत कर रही है। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। अलग पले दादा दादी का साथ न मिल पाया, चाचा चाची बुआ सभी का मेहमानी साया, एक अकेली आया है बस रिश्ते नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर। रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर। धूप सुनहरी क्या वो घर वो अंगने नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
1: क्या बात है।
0: भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली। भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली। क्या खुशियां त्योहारी सब लगता खाली खाली।
1: क्या बात है।
0: वो त्योहारी रंग बिरंगे सपने नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
1: क्या देखें,
0: लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर। अकेला बच्चा रह गया है, सारी की सारी इंटेंशंस उस पर आ गई और इतना सोफिस्टिकेटेड उसे बना दिया गया कि उसके बचपन का क्या होना है, ये उसका अधिकार सारा छीन लिया गया है। आप देखें, हालांकि हम महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चे को इतनी सहूलियतें इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है।
1: जी।
0: लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर। लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर। बचपन से बतियाते दो पल सच्चे नहीं रहे। बचपन से बतियाते दो पल सच्चे नहीं रहे। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
1: क्या बात है।
0: तो ये रचना
1: बहुत ही बढ़िया,
0: क्या कहती है, एक बचपन क्या कहना चाहता है, उसकी अपनी क्या मंशा है।
1: एक मैसेज भी है इसमें, एक सोशली आपने बहुत अच्छी, मतलब कहना कि अवेयरनेस भी पहुंची है, और जो आपने एक बचपन की बात करके हमें फ्लैशबैक में पहुंचा दिया, उसकी
0: बात देख रहा था कि आप थोड़ा सोच रही हैं।
1: नहीं सच में, इसीलिए ना सर कि मतलब एक अपना, एक तो बचपन जब शब्द आते हैं तो हम रिलेट करने लगते हैं तुरंत, हम अपने उस टाइम में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बचपन एक इतनी खूबसूरत चीज है कि हर जवान आदमी सोचता है कि आज एक बार फिर से बचपन आ जाता, हाँ फिर से बच्चा बन जाता। तो वो चीज है
0: जो संभव नहीं
1: है, जो संभव नहीं है बिल्कुल। लेकिन कहते हैं इंसान को अपने अंदर का बचपना कभी नहीं मारना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसकी कुछ हरकतें, उसकी कुछ शरारतें होती हैं जो उसको बचपन में ले जाती हैं, उसकी आदतें ऐसी फील कराती हैं सामने वालों की कितना बचपन है इसके अंदर।
0: सही कहा, बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने। दरअसल क्या है कि हमारी जिम्मेदारियों के साथ हमें एक सीरियसनेस होनी चाहिए लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने कहा अभी कि अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बचपन जो नहीं भूलता है वही अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखता है।
1: करेक्ट, ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट।
0: आपने बहुत बढ़िया बात कही है,
1: शुक्रिया सर।
0: आप भी बचपन में पहुंच गए थे
1: बिल्कुल, और
0: मुझे बहुत आनंद आया,
1: सार्थकता के महसूस हुई, मुझे बहुत आनंद आया। थैंक यू वेरी मच, आपने ये खूबसूरत बात, ये जो कुछ पंक्तियां थी ना, ये एक्चुअल में वो रियलिटी से हमें रूबरू करा रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और मनु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने निकाला। लेकिन मैं चाहूंगा कि जाने से पहले, इजाजत लेने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम म्यूजिक वाला, क्योंकि गीत संगीत भी जरूरी है सर बातचीत के साथ, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो एक छोटा सा गीत, उसके बाद जो है लौट कर आते हैं मनु जी के पास और उनसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले उनसे कुछ बेहतरीन भी सुनेंगे। तो सर एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: दोस्तों वेलकम बैक है और ये महफिल सच रही थी आज कुछ खास शब्दों से, कुछ खास शेरो शायरी से और कुछ खास ऐसी बातों से जो शायद आपको आज सुन के आनंद आ गया होगा। आनंद के साथ और साथ में मनु जी भी स्टूडियो में उपस्थित हैं आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। आई होप सर आपको भी अच्छा लगा हो हमारे स्टेशन में आके।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वास्तव में हम यहाँ पर दो हैं लेकिन तीन है, एक मैं आनंद और एक आनंद।
0: क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने। और मतलब ये जो संवाद है, जो कॉन्वर्सेशन है, ये कैसे मतलब इतना टाइम हम लोगों का निकल गया हमें पता भी नहीं चल रहा है। मतलब हाउ इंटरेस्टिंग, कैसे जा रहा है मुझे भी नहीं पता सर। वो ये ना, जब दिल से आप काम करते हो तो मजा आता है, अरे यार ये बोरिंग लग रहा है, चलो कब खत्म होगा, कब भागेंगे, वो फीलिंग नहीं इसमें लगता, और करो और ज्यादा करना है, वो है, बस वो भूख बढ़ती रहती है फिर। चलिए सर, अब जो है हमारा जाने का समय हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे लिसनर्स को आप क्या सुनाना चाहेंगे, क्या कुछ खास उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे जाते जाते, क्या छोड़ के जा रहे हैं अपनी स्पेशल छाप।
1: जी आनंद जी, अभी पीछे जो बात चली थी कि रचना, कविता, शायरी क्या सामाजिक संदेश भी देती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसके परिप्रेक्ष्य में कि हिंदी की रचना हुई थी
0: जी,
1: दो चार मिसरे, दो चार शेर आप उर्दू के गजल के सुने। जमी पे पाँव फलक पे निगाह याद रहे,
0: क्या बात है,
1: जमी पे पाँव फलक पे निगाह याद रहे, मियाँ बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रहे, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रहे, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो,
0: क्या बात है,
1: करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रहे, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे। देखिए पहले बुजुर्ग ही सलाह देते थे, मशवरे देते थे, और रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, ये ईश्वर के लिए है कि रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रहे, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रहे, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रहे, जमी पे पाँव फलक पे निगाह याद रहे,
0: क्या बात है,
1: मियाँ बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे। और चलते चलते
0: जी जी,
1: मैं अपने सुधी दर्शकों श्रोताओं के लिए, आपके एफएम के इन श्रोताओं के लिए जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दो शेर रखता हूँ और उसके बाद इजाजत।
0: बिल्कुल सर, श्योर।
1: मेरी सच्चाई मेरा एतबार सुनता है,
0: वाह,
1: मेरी सच्चाई मेरा एतबार सुनता है, मेरी खामोशियां ठहराव गार सुनता है,
0: क्या बात है,
1: और बराए हुस्न समात गजल के मिस्रों को उठा के हाथ उन्हें बार बार सुनता है। और ये हमारे समाइन के लिए, ये श्रोताओं के लिए, कि ये तरीका है मेरी हौसला अफजाई का,
0: क्या बात,
1: ये तरीका है मेरी हौसला अफजाई का, बड़े अदब में वो करके शुमार सुनता है,
0: क्या बात है,
1: बड़े अदब में वो करके शुमार सुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी।
0: सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके साथ जो है हमने भी एक जो स्पेशल ये कन्वर्सेशन की, ये जो एक शो था ये एक बेसिकली मेमोरी थी,
1: क्या बात है
0: ना, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो काम तो होता ही लेकिन एक याद भी हम बना लेते हैं।
1: ये मोहब्बत है आपकी, मुझे ताउम्र याद रहेगी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको ऐसे ही परेशान करने के लिए बुलाते रहेंगे,
1: क्या बात है, मेरी खुश नसीबी है।
0: अरे बिल्कुल,
1: जब भी आप याद करेंगे
0: जरूर,
1: आप... नहीं सर के बल दौड़े हुए आएंगे।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे तो हम मुलाकात जो है करते रहते हैं नो डाउट, लेकिन जब लिसनर के साथ मुलाकात होती है तो उसका जो मतलब एक माहौल है वो अलग ही हो जाता है।
1: जी बेशक,
0: है ना। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप आए, और दोस्तों आप कहीं मत जाइए, ऐसी इंटरेस्टिंग शोज के लिए, इंटरेस्टिंग बातों के लिए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए ट्यून इन रहिए आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जो कहता है भैया कनेक्शन जो है ना आपका और हमारा वो दिल से दिल तक का है। जल्दी मिलेंगे फिर कुछ और नए कलाकारों के साथ, कुछ और नई बातों के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और हाँ, ढेर सारा पानी पीना भी जरूरी है क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है,
1: बिल्कुल सही
0: है ना,
1: संदेश रेगुलर रहना चाहिए,
0: एब्सोल्युटली। तो बाकी दोस्तों चलिए अभी हम चलते हैं, तो अब जो है समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा, एक खूबसूरत नगमा आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए, और बाकी ऐसे ही प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों, आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं RJ रीना, RJ कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
4: थैंक यू आनंद। सच कहूं तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
5: बिल्कुल सही कहा, पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते।
6: रीना जी और कुमकुम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम हो जा रही है।
3: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा दे

0: देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी, मोबाइल गलत नहीं है लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
2: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के या रीना कुमकुम के साथ नहीं, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदि हो गए हैं कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
1: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है जब वो खुद ही इतना बिजी है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
3: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
1: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
2: करेक्ट, और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
1: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
2: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
1: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
2: करेक्ट,
1: किसके मन में क्या बात। आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
2: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
1: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों है।
2: सही कहा आपने,
0: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
1: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
3: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
1: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
3: बिल्कुल,
1: अब बातें ज्यादा होती हैं,
3: रिश्ते कम टिकते हैं।
2: क्या बात है, चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद लौट कर आएंगे।
4: हेलो 9821026212 BPL अरे 9820026235 मैच टच यार।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो, और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी, और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था, अब सबके कमरों में ही पहुंचा दे जाता था। रूम पे पहले बेटा हम तुम्हारा रूम में, मतलब मैं भी आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ, क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे,
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग लेट नाइट
1: आ रही है। पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती
0: हैं,
1: अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब होना कि हम समय पर सोए, समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है,
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू समझते थे।
0: एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
1: बिल्कुल।
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरी थिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए, आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल भैया दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है, हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने, तो दोस्तों मतलब कुल मिला के ये है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार, हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी नहीं,
0: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये क्यों, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख ले, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे बेस्ट,
2: फोटो वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही,
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आज ठीक था, बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों, हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो ठीक है।
1: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
1: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है, ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है,
2: बिल्कुल
1: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या नेगेटिव चीज पे दे रहे हैं। पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: चिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।